नहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांप

पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रज मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के

ऐसी शिरानी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

इतना प्रेम है राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी

धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है।

कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए, यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

करना है। तो पॉजिटिव थॉट्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव है हमें ये पता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन या कुछ ना कुछ सोचना है, उसको पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है। जो इनसे भी ऊपर उठते हैं उनको कहा जाता है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट का मतलब है कि रफ से रफ सिचुएशन, आपका दुश्मन सामने खड़ा है, आप उसके लिए भी वेल विशर हैं। जब ऐसे थॉट हमारे हो जाते हैं तब हमें उन लोगों के बीच में उन लोगों की उपाधियां दे दी जाती हैं, जैसे महात्मा हो गए, देवात्माएं हो गए, उनको कहा जाता है। लेकिन हम सब अपने आप को उस लेवल पर नहीं देखते, तो हमें ये लगता है कि जो व्यक्ति गलत है उसे गलत हम क्यों ना समझें, है ना। और फिर कोई कह रहा है कि नहीं आप उसको गलत नहीं समझो, आप उसको सही समझो, आप उसके प्रति। अब जब वो

0: ना कह करके टॉक्सिक थॉट कहना ही इसको राइट वे में बात होगी, क्योंकि पॉजिटिविटी में कहीं भी टॉक्सिक चीज आ ही नहीं सकती है। पॉजिटिविटी का मतलब ही सिर्फ पॉजिटिव है। अगर दूसरा हमें एक सजेशन दे रहा है कि आप सोचे, ये उसकी ओपिनियन है, चूज आपको करना है कि आप उसको किस वे में लेना है। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव थॉट्स बन जाएंगे और वही फिर टॉक्सिक बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे अभी ही 3 लड़कियों ने जो सुसाइड किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो आ रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है बातें कि उनके फादर ने सिर्फ उनको मना किया कि आप मोबाइल में कोरियन चीज़ें या उसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना लें, सिर्फ उसको मना करने के पीछे। अब वो राइट ही था,
1: बिल्कुल
0: रॉन्ग तो नहीं था, अगर हम सब देखें तो वो रॉन्ग नहीं है कि उनको मना किया जा रहा है ज़्यादा टाइम मोबाइल्स में नहीं आप रहो, लेकिन उनके अंदर वो इस कदर रच बस गई हैं कि उनको अपनी मौत ज्यादा इजी लगी, बशर्ते उन चीजों को छोड़ने। तो पॉजिटिव थॉट उनके लिए टॉक्सिक हो गया है। तो था उनके फादर का पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने उसको टॉक्सिक के रूप में लिया और अपने ही जीवन की जो कहे कि एक कहानी थी, एक सुंदर जीवन बनता, तो उसको उन्होंने खत्म कर लिया। इसी को कहा गया है कहीं ना कहीं टॉक्सिक और पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी में कभी टॉक्सिक नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल सही।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी।
1: प्रिया जी, क्या हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना जरूरी होता है?
2: मैं फिर से इसमें आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में चीजों को, अच्छी चीजें जो भी हैं, बढ़ाना

0: चाहेंगी या घटाना चाहेंगी?
1: बढ़ाना चाहेंगी।
0: तो बस फिर पॉजिटिव रहना जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही है अच्छा, यानी बढ़िया साइड। और बढ़िया साइड को हर कोई बढ़ाना ही चाहेगा, और इसका अगर हम स्टार्टिंग बहुत छोटे टाइम से कर दें, आज से कर दें, चलो आज मैं 50 साल की हूँ लेकिन मेरा जीवन हमेशा उतराव चढ़ाव में रहा है और मैं हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ, पॉजिटिव कम, लेकिन अब मैं अगर बदलना चाहती हूँ तो आज और अभी मुझे अपने आप को पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा ले जाना चाहिए। जितना मैं पॉजिटिव रहूँगी, और जो मैं कहती हूँ कि जैसे नेगेटिविटी आज हम चारों तरफ देखते हैं, ये बढ़ रही है, ऑफकोर्स बढ़ ही रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल।
0: तो ये नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, तो इसको काटने की जो दूसरी चीज है, जो वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको देते हैं, तो जितना वायरस है उस लेवल का एंटीवायरस दिया जाता है। तो आज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है हमारे चारों तरफ, तो उसको काटने के लिए हमारे को फिर पॉजिटिविटी, ऑफकोर्स पॉजिटिविटी ही लेना पड़ेगा। तो उसी लेवल का, उसी क्षमता का उतना ही जो कहें अमाउंट, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन के हर उस नेगेटिव को काट सकें जो हमारे अंदर अब आ चुका है, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे हर चीज़ के बिहेवियर में। इनफैक्ट डेस्टिनी में भी हम अब देख रहे हैं कि लोगों को नेगेटिव जो है वो अचीव हो रहा है, और ये ऑल बिकॉज ऑफ मी है, ये दूसरों के कारण नहीं है। जो हम अगर अच्छे से गांठ बांध लें कि मैं आज अगर दुखी हूँ तो वो मेरी वजह से हूँ, मेरे साथ कुछ भी अगर हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। बीच में कई पहलू, कई चित्र हम देखते हैं, लोगों को हम नाम दे देते हैं, उसका डेबिट हम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे आस पास हो रहा है, उसका मूल कारण, जो मेन जो रीज़न है, वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच, मैं अपने बोल, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता हूँ तो वो मेरी डेस्टिनी तक ज़रूर अचीव होता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर क्या उतना पेशेंस है? मैंने कोई चीज़ बिगाड़ी है, आज मैंने कोई चीज़ बिगाड़ दी है, तो एक क्षण में कोई चीज़ जब बिगड़ी नहीं है तो एक क्षण में वो चीज़ बनती भी नहीं है। तो उसको अगर बनाना है, तो अगर मैं और नेगेटिव होता हूँ तो वो बनती नहीं, वो और बिगड़ती है। चाहे वो बात ही है, घर में कोई बात हो गई, मैं नेगेटिव हूँ, चार लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, बातें भी दे रहे हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी ही बढ़ा रही हूँ। मैंने अब एक को अपने और साइड कर लिया, यानी नेगेटिव बना दिया, धीरे धीरे तीसरे को भी नेगेटिव बना दिया, तो बात सुलझेगी या बिगड़ेगी?
1: बिगड़ेगी।
0: तो उसी प्रकार से नेगेटिव को काटने के लिए मुझे पॉजिटिव होना, मुझे अपने आप को चेंज करना, ये बहुत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: अच्छा, जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई बार बार बोले सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नेगेटिव फेज में चल रही है, तो ये क्या सब ठीक हो जाएगा कहना कब हार्मफुल हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए?
2: जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी हम बात समझाने जा रहे हैं, उसकी मेंटल स्टेट को देखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए कहा भी जाता है कि दवाई नब्ज़ देख के दी जाती है। किसी को नब्ज़ अगर कोई हाई डोज नहीं ले सकता है तो उसको बहुत मीठी गोलियों से दिया जाता है और तब जाके वो उस गोली को लेता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही हार्ड दे देंगे तो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा और उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मन की बात को, मन की स्थिति को समझने की कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है और उसके मन की स्थिति इस समय सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहती है, उसको नहीं चाहिए कोई सजेशन। एक्चुअल में आज की जो समय चल रहा है वो इसी तरीके का है। आज हर कोई अंदर भरा हुआ है और हर कोई अपने आप को खाली करना चाहता है, लेकिन उसने अपने माइंड को एक चीज़ दे दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और टाइम बहुत सारा है, लेकिन उस टाइम को कहीं और लगा रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ टाइम देना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, या रिश्तों को बनाने में इतना समय दे करके बैठना हमारे लिए इतना कंपल्सरी नहीं है, हम अपनी लाइफ थोड़ी सी इंजॉय करें। इंजॉयमेंट किस में दे रहे हैं? जो शायद चीज़ें मेरे पास सदा नहीं रहने वाली। आज व्यक्ति दूर बैठे दोस्त से ऑनलाइन बात कर रहा है, उससे अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर बैठे लोग हैं उनके पास बैठने के लिए आज किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर ही है, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि एक दूसरे का चेहरा भी कभी ढंग से देखा हो। पहले यही होता था कि मोबाइल्स नहीं होते थे और चेहरों के भाव ही समझ जाते थे। आज ना माता पिता ना बच्चे किसी के भी भाव समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई समझ रहा है तो शायद उनको समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ता है, एप्पल दिखाना पड़ता है, तब वो ए शब्द जानता है, ए लिखना जानता है। अगर हम उसको पहले दिन ही एप्पल ना दिखा करके ए लिखना सिखाएं या पूरा एप्पल लिखना सिखाएं तो शायद नहीं कभी सीख पाएगा। तो इसके लिए पहले उसको रटाया जाता है, उसके माइंड में वो चीज़ फीड की जाती है। सेम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है उसको ये कहने के लिए कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है वो काम आप करें। आपको गेम्स में खुशी मिल रही है, आप गेम करें। आपको म्यूज़िक में खुशी मिल रही है, आप म्यूज़िक सुने। आपको डांस में खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग में खुशी मिल रही है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है उस काम को करें। लेकिन वो खुशी का जो प्रोसेस हम, वो मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि हमने हॉबी किसको समझ लिया है, मुझे कुछ नहीं करना है उसको हम हॉबी कहते हैं। वो हॉबी नहीं है, उसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो कब तक हम भागेंगे? भागने से तो कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने मन को जो मुझे हेल्दी कर दे, वो टाइम हमें हेल्दी टाइम अपने आप को देना है, ताकि मैं अपने इंटरनल में स्टेबिलिटी ला सकूं। जब मेरे इंटरनल में वो पीसफुल होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, तो हमें किसी की भी बात पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति पहले ही भरा हुआ है, उसके बाद से दूसरा भी कोई बोल रहा है तो वो बातें फिर चुभन हो जाती है और वो व्यक्ति इतना इरिटेट हो जाता है कि जो सही लोग हैं उनके पास भी कभी नहीं बैठना चाहता है, वो उनसे दूरी बना लेता है और वो बहुत हार्मफुल है। हम एक गेम कराते हैं, आपने भी शायद देखी हो, कि बैलून को फुलाया जाता है और बैलून को तोड़ने के लिए कहा जाता है, तोड़ने का कहा भी नहीं लेकिन तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। एक जगह हम यही गेम करा रहे थे तो एक बच्चे ने अपना बैलून, जब दूसरा उसको फोड़ने आ रहा था, उसने अपना बैलून खुद फोड़ दिया। और ये सिचुएशन बहुत हार्मफुल होती है कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ हम और आती हुई देखते हैं, तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने लिए ही उसको हम जीवघात कर लेते हैं, हम अपने लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हम लोगों से रिलेशन ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जिस भी नेगेटिव व्यक्ति हो रखा है उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं करके पहले नेगेटिव को कम करने के लिए उसको खुशी कहाँ से मिलती है वो खुशी की बातें बताना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी इमोशंस को सप्रेस करने की आदत बना देती है?
2: जैसे कि ज्योति जी से पहले बात हुई कि या तो हम टॉक्सिक ही बोल लें या तो पॉजिटिविटी बोल लें, लेकिन क्योंकि ये वर्ड आ चुका है और ये वर्ड हमारी आने वाली ये जो जनरेशन है जो चल रही है जनरेशन जी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस कर रहा है कि क्या ये चीज़ें जो आपने कहा हमारी इमोशंस को सप्रेस करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इसके साथ टॉक्सिक वर्ड जो लगा है तो जहाँ जहर होगा वहाँ वो जो मरने जैसी फीलिंग है, दबने जैसी फीलिंग वो तो आएगी ही आएगी, ओबियस है। लेकिन यहाँ ये बात है कि पॉजिटिविटी यानी सामने वाला आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, अच्छा समझा रहा है, और कई बार माता पिता जो हमारी लाइफ में होते हैं और वो हमारे को प्रेशराइज कर देते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें कहता है अरे तू इतना गलत नहीं सोचते, अरे ऐसे नहीं सोचते, ये मत सोचा कर, ये तू गलत सोचता है। तो लेकिन एक मौका जो हमें हर व्यक्ति को देना चाहिए कि क्या सोचते हो उसको क्लियर वो बोल सके, और मैं समझती हूँ उसे मिलता भी होगा। हर एक को अपने भाव व्यक्त करने का मौका यहाँ नहीं तो कहीं मिलता तो जरूर होगा, और अगर कहीं भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है तो वो लिख तो सकता ही है। और हम जहाँ की हम स्पिरिचुअल जो मैं मानती हूँ कि अगर लिख भी नहीं सकते हो तो भगवान के आगे बैठकर आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सब में असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपना ही एक जोन बना लेते हैं जिस जोन से वो बाहर आना नहीं चाहते और किसी को अंदर आने देना भी नहीं चाहते। कोई इतना इजीली सहज उनके कमरे में घुस नहीं पा रहा है, उस जोन में घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से फिर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। और क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो इसलिए उन दोनों ने दोनों ही शब्दों को जोड़ दिया, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक हूँ, आप पॉजिटिव हो, इसलिए मुझे फोर्स मत करो। लेकिन इस दिशा में अगर हम बढ़ते चले गए तो ये हमारी जिंदगियों को, हमारी हर चीज़ को ये तहस नहस कर देगा। इसलिए इस वर्ड से, इस दुनिया से, इस कमरे से बाहर आइए। अपना जो आपने जोन बना लिया है वो किलिंग जोन है, वो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से ख़राब करेगा, धीरे धीरे फिजिकल इमोशनल हर चीज़ से आपको बिगाड़ देगा। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, बाहर आ जाएं, तो बहुत बेहतरीन दुनिया है। आपके नेगेटिव जो

0: बाहर से कुंडी नहीं है कि कोई भी आके खोल देगा, ये कुंडी मैंने मारी है, अंदर से मारी है, इसलिए मुझे ही उठकर उस कुंडी को खोलना होगा और कोई इस कुंडी को खोल ही नहीं सकता है। इसलिए इतनी हिम्मत, इतना करेज अपने आप में लाएं और इस कुंडी को खोलें और खोल करके लोगों को अंदर आने दें या खुद बाहर आ जाएं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: क्योंकि उस बंद कमरे में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी अभी के प्रिया जी।
1: क्या सैडनेस एंगर या फ्रस्ट्रेशन को फील करना भी हेल्दी होता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
2: आपको क्या लगता है सैडनेस में मिलती है सुकून?
1: नहीं बट कभी कभी हाँ।
2: एक्चुअल में सैडनेस में कभी सुकून है ही नहीं, वो जैसा कि पहले भी बताया है कि हमने उस चीज को समझ लिया है कि हाँ वो सुकून दे रहा है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम सदा सैडनेस में नहीं रह सकते लेकिन सदा खुश
1: बिल्कुल
2: रह सकते हैं। सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब खुशी मेरे लिए परमानेंट है लेकिन दुख परमानेंट नहीं है, है ना। दुख से कभी भी हमें जो कहे कि एक हेल्दी कहे वो नहीं हो सकता। जब हेल्दी नहीं रहते तभी दुख आता है, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है, तभी सैडनेस होती है। तो हेल्दी तो हम इसको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हमने अपने आप को ये समझा लिया है कि शायद यही जीवन का दस्तूर है और यही जीवन है कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंगर बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा गुस्सा नहीं किया जाए तो काम ही नहीं होता। एक्चुअल में दोष मैं नहीं कहूँगी आज के बच्चों का है या किसी का है, दोष है हमारी जो चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमारी दादी हुआ करती थी तो उस समय पर क्रोध करना माना उनकी सिर्फ आँख ही अगर वो दिखा दे तो उसको ही क्रोध समझ लेते थे, गुस्सा गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा समय बदला तो एक थप्पड़

0: पर लगा दिया करते थे। तो पता चला कि बहुत देर तक बात करने के बाद एक थप्पड़ लगने पे काम होता है, तो इतना पेशेंस था उनके पास कि एक थप्पड़ तक वो टिल वेट करते थे, वो पेशेंस में रहते थे। और समय बीता तो वो चीज़ें बढ़ गई। अब जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलेंगे अगर आज की जनरेशन से, तो यही कहेंगे होगा टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहते कहते कहते उनके पास सच में ही उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब टाइम नहीं है कि हम पेशेंस रखें, अब टाइम है बस मारो और काम करो, काम करवाओ, क्योंकि वही उनकी नेचर बन रही है। लेकिन वो नेचर क्या उनके लिए खुद से पूछ के देखें, नेचर वो अच्छी होती है जो दूसरों को देना वही अच्छा है जो मुझे खुद के लिए पसंद है। क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के काम कराए तो मुझे पसंद होगा, अच्छा लगेगा? क्या मुझे कोई गलत बोल करके काम कराना चाहे तो क्या हम करेंगे? या 24 घंटे हमें गलत ही बोलता रहे तो क्या मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हमारा मन ही वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसे गुस्सा नहीं चाहिए, जिसे प्यार चाहिए। लेकिन आज प्यार की परिभाषा हमने बहुत खराब कर दी है, प्यार का पता ही नहीं है किसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, प्यार का मतलब है अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो प्यार का मतलब है कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या मुझे दुख में खुशी मिलती है, क्या मुझे उदासी में कभी खुशी मिलती है, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है या हमारी और घट जाती है? घटती है ना। तो ऐसी ही जो चीज़ मेरे जीवन में से डे बाई डे घटा रही है चीज़ों को, तो वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है? तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी जो चीज़ है वो खुशी ही हेल्दी है, इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी ये नहीं कहा गया है रोने जैसी खुराक नहीं या दुख जैसी खुराक नहीं, हमेशा यही कहा जाता है खुशी जैसी खुराक, क्योंकि वही हमें हेल्दी बनाता है, वही हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व करता है।
1: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आपका क्या कहना है इस पे?
2: जी जैसे कि कहा कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपने एक एक पॉजिटिविटी जोड़ रखी कि हेल्दी हो सकता है क्या। तो वही बात है कि जैसे मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड है कि कितना भी नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव रह सकता है, ये आपकी अपनी क्षमता है। हर एक के साथ ये लागू नहीं होता। सैडनेस जो कि नॉर्मल नहीं है, एंगर कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन कहें, ये सब नॉर्मल इमोशंस नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और इसको अंदर रखने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है नेगेटिव को एक्यूमुलेट यानी संभालने के लिए, रखने के लिए। और वहीं पे आपने एक नेक्स्ट जो वर्ड डाला है वो हेल्दी, तो हेल्दी इज हेल्दी, ये तो है ही पॉजिटिव। तो जैसे कहते हैं कि जहर जहर कभी अमृत हो सकता है क्या?
1: नहीं,
2: लेकिन हाँ हो सकता है अगर धीरे धीरे धीरे धीरे एक पर्सन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, चाणक्य जी ने दिया था, वही जहर उनको इतना बलशाली बना देता है कि शत्रुओं के आगे उनका जहर काम नहीं करता है ना। शत्रुओं के दिए गए जहर से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बात यही है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है और उसको किस दिशा में लिया है। मैंने अपने जो क्रोध है उसको अपनी ऊर्जा बना ली है, ठीक है। मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उसको अपना ईंधन बना लिया है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो दिस कैन बी हेल्दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चीजें कभी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारी ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होने लगती है। यानी अंदर आग लगी है तो अंदर का जो कपूस है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो जलाई चली जा रही है। अगर अच्छाई जल रही है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा ही घर एक दिन जल जाने वाला है, तो ये कहाँ से हेल्दी हो सकता है।
1: सही बात।
3: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: ज्योति जी, सोशल मीडिया ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे नॉर्मलाइज कर दिया है?
2: इसकी अगर हम बात कहें तो टॉक्सिक शब्द को पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चीजें हम जो लोग देख रहे हैं, टॉक्सिक ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान है, फोकस है जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया में। आजकल सारी जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला है, हर जगह नेगेटिव ही न्यूज है। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप टेलीविज़न ऑन करें, चाहे आप मोबाइल्स में कोई स्क्रॉल करते करते कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज़, उसमें क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें, जो कि देखते देखते हमारे अंदर वो इमोशंस बना रही हैं, वैसा ही हमें बनाती जा रही है अंदर से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जितना सुनने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर इंटरनल, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो जा करके प्रिंट हो रही है। और जब वो प्रिंट हो जाती हैं तो नेचुरली मेरे भी जो नेचर है, मेरे भी बिहेवियर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आज किसी बच्चे ने देखा कि छोटेपन में एक छोटी सी बंदूक हाथ में दे दी गई कि खिलौना है। अब उसे वो खिलौना चलाने आया, थोड़े दिन बाद उसने बड़ा वो ले लिया, तो वो चीज़ क्या है उसके इम्प्रेशन? फिर उसको ये लगता है कि नहीं, मैं तो ये चलाऊं तब मुझे आनंद आएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, हम क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? अगर हम ख़राब चीज़ देखते जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ही पनपेगी, वही टॉक्सिक बन जाएगा। आज कैसे बच्चों को सुसाइड करने का इतनी हिम्मत हो रही है? कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको वो ओपिनियन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब एक सीरियल आया करता था, सबने देखा, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्राइम पेट्रोल नाम से, तो जी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू आया। एक बच्चे ने जो कि घर में रहता था और बहुत छोटेपन से ही वो टीवी पे देखता था और उसको क्राइम पेट्रोल ही बहुत अच्छा लगता था, वो देखने लगा। उनके घर में ही, जिसके घर में वो काम कर रहा था और बड़े बच्चे की तरह उसको वो पालते थे, उनके उसके मन में उसको देख करके आया कि मैं भी ऐसा करूं। और उसने घर में छोटी बच्ची जो कि उसके पास ही रहती थी, उसको ही भैया कहती थी, उसके साथ ही, सिर्फ उसने उसको देख करके उसकी उसको भी मार दिया और घर का सारा सामान लेकर के चला गया। जब पकड़ में आया, क्योंकि प्रोफेशनल तो था ही नहीं, जब पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में ये सारी जितनी भी प्लानिंग थी ये कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई, कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? तो कहा, मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उससे मैंने अपने माइंड को जो है मैनेज किया, मुझे सारी टेक्निक्स आई, कहाँ मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स हटा देने हैं, कहाँ कैसे करना है, वरना हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ों को जो हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे तो नेचुरल पॉजिटिविटी ही लोग लेंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिविटी देने के भी और नेगेटिव देने का भी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या हम बिना टॉक्सिक हुए पॉजिटिव रह सकते हैं?
2: बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने दादा दादी जी को भी देखते हैं, और ये फिर भी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं तो हम उनके पीछे का भी सोच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: कि जो बिल्कुल ही चक्की पे आटा पीसते थे और गाय भैंस ही जो उनको पालन करते थे, पालते थे, उनके द्वारा ही अपना जीवन संचालन करते थे, जहाँ लाइफ बहुत स्लो थी, जो हमारे दिशा में हम देखते हैं तो लाइफ बहुत स्लो थी, लेकिन लाइफ स्लो होने का मतलब सोच भी बहुत स्लो थी। तो सोचने में स्लोनेस लाना, इसका मतलब नंब होना नहीं होता या डम्ब होना नहीं होता, स्लो होने का मतलब है उतना ही स्पिरिचुअल थे। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आज भी अपने जीवन में महत्व देते हैं, अपने लाइफ में बढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उतना ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना ही हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अपने कहा कि टॉक्सिक हुए बिना हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता ही नहीं कि टॉक्सिक हुए बिना ऐसा हो सकता है। हम गुस्सा हुए बिना किसी से अपने काम नहीं करवा पा रहे, हम गुस्सा हुए बिना कोई काम खुद भी नहीं कर पा रहे। आसपास जितने लोग हैं, हमें लगता है गुस्सा कर देने से वो फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा तो करना जायज़ है, बनता है। और इसीलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि गुस्सा तो नॉर्मल है। वाकई में अगर देखें तो नॉर्मल तो नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। हमने तो धारावाहिक में भी ऐसे सीन्स हमारे दिखाए गए हैं जो कि मैं नहीं मानती वो सत्य होंगे, कि हमारे देवी देवताओं को भी गुस्सा करते हुए दिखाया है, जो मेरा मानना है कि वो सत्य नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिक्सिंग की गई है, क्योंकि देवी देवता भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर अगर गुस्सा कर लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। अगर वो गुस्सा होते तो गुस्से को कभी भी नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव साइड में नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल सही बात।
2: तो हम वाकई में पॉजिटिव रह सकते हैं और बिना टॉक्सिक हुए अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये देखना होगा कि मैक्सिमम मैं कौन से लेवल पे रहता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा सर्कल है या जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो भी मैं खा रहा हूँ या जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं।
1: बिल्कुल।
2: जो मैक्सिमम होगा वो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। आप दो बच्चे हैं घर में, एक को आप गुरुकुल में रखिए या साधुओं संतों के बीच में रखिए, और एक को जो नॉर्मल जो आज का है माहौल उसमें रखिए। डीजे भी है, सब कुछ है, बार है, डिस्को है, स्कूल है, लाइफ है, सब कुछ है, और एक को वहाँ जंगलों में रखिए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जितना ही वो शांत होगा यहाँ वाला, उतना ही हाइपर होगा। वो जितना ही स्लो है उतना ही फास्ट। लेकिन जितना ही स्लो का मतलब स्लो नहीं कहूंगी, जितना ही स्लो होने के कारण उसकी जो क्षमता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्षमता है, यहाँ उसमें वो जीरो होगा। और अगर थोड़े बहुत नंबर मिल भी जाएं तो 10-5 ही मिलेंगे, यानी उसका अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो 10%, अगर उसके अंदर सहन शक्ति है तो 1%। तो इस तरीके से हर चीज अगर हम देखते हैं तो वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अपना माहौल बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उसके बाद अपने जीवन में देखिए तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मेरा यही है कि किसी को भी अगर समझना है या समझाना है तो सबसे पहले उनके मन के भाव को समझने की कोशिश करें। अपने मन को शांत करके पहले उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही उनके मन को जब दिशा बदलेगी तभी उनकी दशा भी बदलेगी, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। तुरंत अपने अनुभव या अपनी चीज़ें शेयर नहीं करें, उनके आगे थोपे नहीं किसी के ऊपर। हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से उनको उनके तरीके से ही दें। अगर बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ही चीज दी जाएगी। अगर हम सोचे कि बुजुर्गों की तरह दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर उनके मन के हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो हर एक सिचुएशन को संभालना बहुत इजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, पॉजिटिविटी तब तक हेल्दी है जब तक वो हमारे इमोशंस को डिनाई नहीं करती। अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना ये वीकनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का दिल से शुक्रिया इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक शराब भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुरानी हवेली के खजाने का राज जानता है।
4: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
5: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही,
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है। चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कभी लिया? ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद अजय मोनिका।

मिथिला पेंटिंग जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। माना जाता है कि माता सीता के दौर से ये कला चलती हुई आ रही है। जब माता सीता और भगवान श्री राम की शादी हो रही थी तो राजा जनक ने ऐलान किया कि सभी घरों को रंगों से सजा दो, हर तरफ सिर्फ कलर ही कलर दिखने चाहिए। तब प्राकृतिक रंगों से लोगों ने मिलकर के अपने घरों की दीवारों पर चित्र बनाए, जो कि अभी मिथिला पेंटिंग, जो मिथिला कला है उसके नाम से जाना जाता है। इसे मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी कला भी कहते हैं और तब से शुरुआत हुई इस कला की। लोगों ने हर खुशी में, हर शादी में, उत्साह में, अपने घर के किसी भी कार्यक्रम में इस काम को करना शुरू कर दिया और तब से ये हमारी संस्कृति बन गई। और ये कहानी तो ये भी कहती है कि 1936 में जब भूकंप आया और अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वो उस भूकंप का प्रशिक्षण करने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि टूटी हुई घरों की दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई है। उन्होंने इसके बारे में सर्च किया, तब उन्हें पता चला मधुबनी कला के बारे में और लोगों को पेपर्स प्रोवाइड करा, फिर उन्होंने इसे बिजनेस बना दिया। तो कुछ भी रही, किसी न किसी तरह से ये कला आगे बढ़ती चली आ रही है और आज बिहार की पहचान बन चुकी है। इसी के थ्रू लोगों को बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं, उन्हें उनकी पहचान मिल रही है। और आज की हमारी कहानी भी इसी कला से जुड़ी हुई है, जिन्हें पद्मश्री भी मिला। और इनके बारे में सर्च करते करते मुझे पता चला कि बिहार में एक ऐसा गाँव भी है जो कि सिर्फ इसी कला के लिए जाना जाता है और वहाँ के लोगों को न जाने कितने अवार्ड, न जाने कितने प्रसिद्धियों से सम्मानित किया जा चुका है। आप बहुत सारे लोग इन सारी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आज आई हूँ आपको उन सारी बातों से इंट्रोड्यूस कराने और मैं आपको बताऊंगी कि ये कला कैसे ग्रो कर रही है और बिहार में इसे कैसे संभाल कर रखा है। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो महारानी पर कुछ हटके सीरीज।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: सर्दी से सुकून तक, दिस विंटर डोनेट क्लोथ्स एंड गिव द वार्मथ ऑफ लव। कभी किसी को गले लगाया है, किसी की आंखों में सुकून देखा है, पर आपको पता है कि आपका एक पुराना शॉल किसी के लिए वो गर्म झप्पी बन सकता है। सो दिस विंटर डोनेट क्लोथ्स एंड गिव द वार्मथ ऑफ लव।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद अजय मोनिका।

कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है, पर बाद में पता चलता है कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये चीज लाइफ में नहीं होती, अगर हमने ये चीज मिस कर दी होती तो जहाँ पर आज खड़े हैं शायद वहाँ नहीं होते। Hey, welcome back, Radio Lovers. मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटकी सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेडी के बारे में जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में आगे चलकर क्या होगा। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आई, पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज को चुना जो उनकी लाइफ बन गई और आज उनकी पहचान भी बन गई है। और पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि शादियां जो है आपसे बिना पूछे करा दिए जाते थे। खैर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो बच्चे लव मैरिज भी कर रहे हैं, लिविंग में भी रह रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि ड्रम खैर छोड़ो उस बात को, तो आजकल के बच्चे बिना पूछे सारी चीजें कर रहे हैं, सारे शौक पूरे कर रहे हैं। आजकल मम्मी पापा इतनी रोक नहीं लगाते, पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था। जो आज की हमारी लेडी हैं उनकी बचपन में ही शादी करा दी गई और कहा गया कि आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारी जिंदगी है। पर कुछ साल बहुत शादी अच्छी चली, 6 महीने का बेबी भी हुआ, बट उसकी डेथ हो जाने के बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई और ये ससुराल से अपने मायके चली आई। वहां पर इन्हें अपनी लाइफ को सेटल करने में बहुत टाइम लगा। ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा वगैरह भी करती थी और अपनी लाइफ को इसी तरह से कैसे भी करके काट रही थी। पर एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने एक ऐसी जगह पर झाड़ू पोछा करना स्टार्ट किया जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती थी और बहुत रुचि के साथ लोग उस पर काम किया करते।

करते थे। वो घर था महासुंदरी जी का, जो कि मधुबनी कला में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है और बिहार में रहती हैं। तो इन्होंने भी उनसे कहा कि मुझे भी, तब उनको दाई जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि दाई जी मुझे भी पेंटिंग सीखनी है, और क्या मैं इस कला को, ये जो आप पेन से कर रहे हो, ये मैं सीख सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम देखो, अगर तुम्हें आ जाता है, तुम कर लेती हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया और इनके हाथों में वो जैसे कि वो कला के लिए ही बने हूँ, ऐसी खूबसूरती आ गई उस कला में। जब भी ये कोई चीज बनाती या कुछ भी करती तो बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया, बच्चों को कोचिंग भी देने लगी है। इन्होंने बहुत सारी बच्चों को मधुबनी पेंटिंग सिखाई भी है और आज ये इसी कला से अपनी पहचान भी बना चुके हैं। तो भी बहुत कुछ बाकी इनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि इनका जो गांव है, इनकी जो कला है और कैसे ये पद्मश्री तक पहुंची, बहुत सारी चीजें अभी तक बताने बाकी हैं। और सबसे स्पेशल है इनका नाम, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी, बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज़।

0: खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
3: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद अजय मोनिका।

क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पर कला बहुत मशहूर हो और पैशन ही दुनिया में पहचान दिलाता हो आपको? तो मैं बात कर रही हूँ बिहार की मधुबनी की, और गई थी छोटे से ब्रेक पर, आ गई हूँ वापस। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज। ये छोटे मोटे ब्रेक तो चलते रहते हैं, पर आपका और हमारा मिलना कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ इस कहानी का भी आप तक पहुंचना कोई नहीं रोक सकता जो कि आज मैं लेकर के आई हूँ। कहानी है दुलारी देवी जी की, बिहार के मधुबनी की रहने वाली दुलारी देवी, जिन्होंने बहुत संघर्ष के दिन देखे और जब कला का हाथ थामा तो वो उनकी पहचान बन गई। महासुंदरी जी के घर में इन्होंने काम किया, पर धीरे धीरे कला को सीखते सीखते उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस काम को किया, उसको जीवन में ढाला कि वो उन्हें देश के मंच तक ले गई। 2025 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से, और आज देश का हर बच्चा उनको जानता है। और अगर आप इस स्टोरी को नहीं जानते थे तो आज मैंने आपको बताई दी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मधुबनी जो कला है वो कोई सिंपल साधारण सी कला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये रामायण काल से चलती हुई आ रही कला है। इस कला की बहुत सारी खूबसूरती और खासियत भी है, जैसे कि इसमें प्राकृतिक रंगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप जब भी मधुबनी पेंटिंग्स को या मिथिला पेंटिंग्स को देखेंगे तो उसमें गाढ़े चटक रंग दिखाए जाएंगे, क्योंकि जब पहले रंग नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पर लोग जो हैं फूल पत्तियों से रंगों को निकाला करते थे, हल्दी से पीला रंग दिया जाता था, इस तरह से पेंटिंग को कंप्लीट किया जाता था। और इसमें जो है संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसमें खुश और नाचते हुए लोगों को दिखाया जाता है, और ज्यादातर आप वो पेंटिंग्स में देखोगे कि भगवान जी की मूर्त को दिखाया जाता है, राधा कृष्ण हो गए, अर्धनारेश्वर हो गए, माँ दुर्गा हो गई, इन सभी भगवानों को मिथिला पेंटिंग में जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब भी आप सर्च करोगे तो देखोगे इनकी पेंटिंग्स में आपको कहीं भी कभी भी कोई स्पेस नहीं मिलेगा, हर एक कोने को इतनी बारीकी से भर दिया जाता है, और यही शायद इस कला की बेहतरीन खूबसूरती है। और इन पेंटिंग्स में आप मछलियाँ, हाथी, कछुए, ये सारी चीजें भी देखोगे जो एक तरह से प्रकृति को कनेक्ट करती हैं। मछली कहा जाता है कि, वैसे तो मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही, पर कहा जाता है कि जब आप घर से निकल रहे हो तो मगर मछली देखकर निकलते हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। और इसीलिए लोग पहले दीवारों पर और पेंटिंग्स में मछलियां बनाते थे कि जब मछली देखकर निकलेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, वो सौभाग्य का एक प्रतीक माना जाता है। जैसे कि हाथी जो है वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और कछुआ जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आप मिथिला पेंटिंग्स में ज्यादातर जानवरों को, फूल पत्तियों को, प्राकृतिक चीजों को जरूर पाएंगे जो कि हमारे देश की संस्कृति है। तो आज के इस कंटेंट को सर्च करते वक्त मुझे जो भी बातें पता चली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीजें आपको बोलकर एकदम पिला दूं, पर मुझे जाना पड़ेगा अभी एक छोटे से ब्रेक पर। वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि दुलारी देवी सोशल मीडिया पर क्या बातें कहती हैं, और पद्मश्री मिलने के बाद भी उन्हें ऐसी क्या खुशी मिली है जो वो लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। तो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कहानियां कुछ अनकही, अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
2: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
1: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हिट की सीरीज विद आरजे मोनिका।

0: फिलहाल इंतहा तो हो ही गई है इंतजार की, पर मैंने आपसे इतना इंतजार भी नहीं कराया है। मैंने आपको प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाए हैं और अब कहानी सुनाने वाली हूँ। वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और मैं बात कर रही थी बिहार की दुलारी देवी जी की, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स को और वहाँ की कला को ही अपनी जिंदगी बना लिया। कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है और आप उसको अपना लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो कुछ ना कुछ वो आपकी लाइफ में चेंज करके ही जाती है। पर यहाँ पर सिलसिला ये रहा कि जिस तरह से उन्होंने इस कला को अपनाया, वो उनकी पूरी जिंदगी ही बन गई। और आज बिहार का एक ऐसा गांव भी है जो इस कला के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, बिहार का जितवारपुर। इस गांव में शादी के बाद महिलाएं आती हैं और जो है इस कला को अपनाती हैं, साथ ही साथ वो इनका रोजगार है, बिजनेस है और एक तरह से इनकी हिम्मत को बढ़ाने का जरिया भी है। क्योंकि आजकल लोगों को हर कीमत पर पैसा चाहिए ही चाहिए, पर वो अगर आपकी पैशन से मिले तो क्या ही बात है। और जितवारपुर में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर इस कला पर काम ना किया जाता हो, वहां महिला हो या पुरुष, हर इंसान इस चीज को अपनाता है। वहां साड़ियों पे, दुपट्टों पे भी इस चीज का काम होता है। बहुत बड़े बड़े लोग, दुनिया भर से लोग यहां की कला को देखने के लिए और खरीदने के लिए आते हैं। तो मैंने भी आज इस कहानी को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है और चलिए सुन लेते हैं कि दुलारी देवी अपनी कहानी के बारे में क्या कहती है।
1: पहले पहले हम मजदूर के काम करते थे, दाई के काम करते थे, कर्पूरी देवी घर में, महासुंदरी देवी घर में उन्हें स्थान दिया रहने का, पेंटिंग बनाने का। तो उन लोग के देखते रहते, बर्तन वगैरह माँज करके देखते रहते, तो हमको लगा कि हम भी सीख ले तो अच्छा रहेगा। तो ठाड़ होके देखे थे, उन लोग लिखते रहते थे, तो वो जो हमको भी हुआ जो हम हो जाएगा कलाकार तो अच्छा रहेगा, हम भी हो जाए कलाकार। तो
0: ये थी दुलारी देवी जी की कहानी उनकी जुबानी। और अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मधुबनी कला और दुलारी देवी जी की इस कहानी के बारे में आपको पता था? और एक छोटी सी और बात है जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि 2025 में जो निर्मला सीतारमन जी ने बिल पेश करते हुए साड़ी पहनी हुई थी, उस पर भी मधुबनी कला का ही काम हुआ था और उसे गिफ्ट किया था हमारी आज की जो लीडर, हमारी नायिका है स्टोरी की, उन्होंने, यानी दुलारी देवी जी ने। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मधुबनी कला के बारे में बातें कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और छोटी छोटी खुशियां जो आप हमारे रेडियो के साथ शेयर करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। आपकी कॉल और मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। और ये बात कहते कहते मुझे याद आया कि हमारे एक लिसनर का मैसेज आया था कि भाई उनको धर्म काटा मूवी का ये सॉन्ग सुनना है जो कि आगे प्ले होने वाला है, उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, वो है छोटी काशी से रानी जी, यानी कि बहुत ही प्यारी लेडी, जहाँ पर दुलारी की बात हो रानी की बात ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो रानी जी की फरमाइश पर ये आने वाला प्यारा सा सॉन्ग। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रेडियो महारानी सुनते रहिए, खुश रहिए और साथ ही साथ कुछ नया सोचिए, नया करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी और नई सोच के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 89.6 FM पर सुन रहे हैं आप पोषण की पाठशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और सही पोषण की। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो शुरुआती दौर में एक नया फेज शुरू होता है, यानी पहला खाना। ये वो टाइम होता है जब माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को सॉलिड फूड देना जरूरी माना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद सवाल ये उठता है, पहला खाना क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करें और क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना, जो कि आज हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और बच्चों के सही पोषण पर अपने एक एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी क्यों नहीं होता, और अगर बात की जाए पहले खाने की तो पहला खाना शुरू करना क्यों जरूरी होता है, और साथ ही अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तो इसका सिंपल मतलब क्या है जो हर पेरेंट आसानी से समझ सके।
1: हाँ अंजलि, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसा आपने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने कंप्लीट होने पर ही क्यों स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली 6 महीने तक बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ रही हैं, प्रतिदिन उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए उसकी न्यूट्रिशनल जरूरत भी बढ़ जाती है। केवल ब्रेस्ट मिल्क इस समय काफी नहीं होता, तो 6 महीने के बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, ध्यान रखिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो हम सॉफ्ट फूड या सेमी सॉलिड फूड देते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे लिसनर्स तक ये इतनी इम्पोर्टेंट बात पहुंचाने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने क्लियर किया कि 6 महीने के बाद सिर्फ दूध नहीं बल्कि सही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध। इसलिए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेनू खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए, साथ ही ये खाना घर पर बना हो या फिर मार्केट पैक्ड फूड भी चल सकता है। अक्सर देखा गया है पेरेंट बच्चों को बिस्किट रस्क या फिर पैक्ड फूड खिला देते हैं क्योंकि वो इजी ऑप्शंस होते हैं। तो ये कितना सही है, कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए। साथ ही बात की जाए नमक और चीनी की, तो कब से देना चाहिए, कब सही समय है देने का, और अक्सर देखा गया है कई बार बच्चे खाना नहीं खाते, इस केस में पेरेंट को क्या करना चाहिए।
1: अंजलि, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो न्यू पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खाना सेमी सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, और तीसरी बात ये है खाना जो है वो कैलोरी डेंस होना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया कि खाना सेमी सॉलिड या सॉफ्ट होना चाहिए, खाना ना तो बहुत लिक्विडी हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ताकि बच्चा उसको आराम से खा सके। और जो हमने बात की कि खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर खाना घर पर बन रहा है तो आपको मालूम है कि वो सेफ है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है और बिना प्रिजर्वेटिव के है। सो बच्चे को इस समय पर सेफ और हाइजीनिक खाने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि खाना कैलोरी डेंस हो, ताकि उसकी छोटी सी भूख में उसकी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी हो सके। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे दाल अच्छे से पकाकर मैश करके देना, चावल को पकाकर उसको मैश करके खिला सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं और किसी भी अनाज का दलिया बनाकर दे सकते हैं, सब्जियां पकाकर दी जा सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप घर का बना हुआ खाना दें बच्चे को, ना कि मार्केट के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड दें। बच्चे को एक साल तक चीनी और नमक की जरूरत नहीं है, अभी वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम शुरू कर रहे हैं उसके टेस्ट से फेमिलियर हो रहा है, तो नमक और चीनी कभी कभी ओरिजिनल टेस्ट को ओवर पार कर लेते हैं और वो असल खाने को समझ नहीं पाता है। मैं यहाँ एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगी, प्लीज क्विक फिक्सेस अवॉइड करिए। अगर बच्चा मील रिजेक्ट कर रहा है या वो रो रहा है, तो बिस्किट या पैकेज स्नैक्स देना उस मोमेंट में आपको इजी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की प्रेफरेंस वही खाना बन जाती है और वो उसकी हैबिट तोड़ना मुश्किल हो जाता है और फिर नॉर्मल खाना देना और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बजाय जो फेमिलियर फूड है, जो वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, वही खाना दीजिए। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टेक्सचर, उन्हीं

0: खानों के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस फूड की बजाय फैमिलियर खाना दीजिए, शॉर्टकट ना अपनाएं।
1: जी डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बातों से एक बात जरूर क्लियर हुई है, घर का बना सिंपल और फ्रेश खाना ही सबसे बेस्ट होता है। सो जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज बिस्किट और पैक्ड फूड को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने बच्चे का पहला खाना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखिए जो आज हमें डॉक्टर बता रहे हैं। साथ ही घर का बना खाना सबसे बेस्ट होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर के बने खाने को ही दीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए खाने की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। क्या एक ही तरह के खाने को हमेशा बच्चे को खिलाया जाए या फिर बच्चे के खाने में वैरायटी इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इसी के साथ बात की जाए अगर कंसिस्टेंसी की, तो किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खाने की, ज्यादा पतला, ज्यादा गाढ़ा या बिल्कुल पेस्ट जैसा जो बच्चा आराम से खा सके। ये कई तरह के डाउट्स हैं जो हर पेरेंट्स के मन में रहते हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर बच्चा शुरुआती दौर में खाना खाना शुरू कर रहा है तो दिन में कितनी बार खाना खिलाएं 6 से 8 महीने के बच्चे को?
1: हाँ अंजलि, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का पर्पस बस बच्चे का पेट भरना नहीं है, बल्कि उसे न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट देना है। अगर हम बेबी को बार बार एक ही तरह का खाना देते हैं, जो कि कुछ माओं को बहुत आसान लगता है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल जरूरत उस खाने से पूरी नहीं होगी। इस एज में उसको कई तरह के विटामिन्स चाहिए और आयरन और जिंक जैसे कई मिनरल्स की जरूरत है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें उसके डाइट में अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स इंक्लूड करना जरूरी होता है, जैसे हरी सब्जियां हैं, नॉर्मल सीजनल सब्जियां, दालें, लेग्यूम्स, रूट ट्यूबर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट नट्स और सीड्स, ऑफ कोर्स इन पाउडर फॉर्म एंड वेल कुक्ड फूड। 6 से 8 महीने के बच्चे को 1 टेबलस्पून दिन में 2 बार हम दे सकते हैं और धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं खाने की, जो हम खाने में वैरायटी ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी वैरायटी हम इंक्लूड करते हैं, उतना बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है अलग अलग तरह के खानों के लिए, और उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में ध्यान रखें खाना हमेशा सिंपल और सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ही हमें बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका बेबी अडेप्ट करता है खाने की हैबिट को, उसी तरह से क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस तरह से इनिशियल डेज में रूटीन सेट किया जाता है तो एक बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है खुद को खाने के साथ इंट्रोड्यूस कर पाना। इसलिए कहा जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का, फिर से लौटेंगे पोषण की पाठशाला में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ये बताइए न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन या फिर गुड फैट्स। साथ ही जो पेरेंट वेजिटेरियन है वो कैसे इंश्योर करे कि प्रॉपर प्रोटीन वो अपने बच्चे को दे सके, जैसे कि दाल का पानी या फिर दाल मैश कर या फिर कोई सब्जी। किन तरह के ऑप्शंस को वो इंक्लूड कर सकते हैं बेबी के खाने में, सो दैट कि प्रॉपर प्रोटीन एक बच्चे को दिया जा सके।
1: बढ़ते हुए बच्चे के लिए हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत है, तो एक कोई पर्टिकुलर खाना लेकर हम नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हरी सब्जियां हों, सीजनल सब्जियां हों और दालें, लेग्यूम्स हैं, अंडा ईट होने पर शुरू कर सकते हैं। जो लोग केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देना बहुत आसान है। अगर हम अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स में से खाना पिक करके कॉम्बिनेशंस में बनाते हैं, जैसे आप खिचड़ी दे रहे हैं तो उसमें दाल जा रहा है और दलिया है तो उसमें दूध चला जाएगा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है और इस समय उसे आयरन और जिंक जैसे मिनरल बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि उसकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। उसको हेल्दी फैट्स चाहिए क्योंकि इस समय पर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है बॉडी की, और प्रोटीन्स ऑफ कोर्स हमें, उसकी मसल्स बन रही हैं, वो बड़ा हो रहा है, इसलिए प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करना है कि हम दाल है, लेग्यूम्स है और खिचड़ी बना रहे हैं अगर हम, तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और बादाम को पीस कर भिगो कर वो हम खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हम थोड़ा सा तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भिगो कर पीस कर पका कर ही देना है। देखिए, इस स्टेज पर बेबी को सिर्फ पेट भरना नहीं है, उसको सही तरह से ग्रो भी करना है, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। वेजिटेरियन घरों में भी ये इजीली मैनेज हो सकते हैं। दाल, खिचड़ी, सब्जी मैश, थोड़ा सा घी ऐड करके हम दे सकते हैं। अलग अलग तरह के अनाजों का हम दलिया बना सकते हैं, उसमें कुछ नट्स और सीड्स को हम भिगो कर पीस कर ऐड कर सकते हैं। इस समय जो बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत है वो पूरी हो जाती है। और एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि हमें दाल देनी है या दाल का पानी देना है। तो अगर हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं, उसकी छोटी सी भूख जो है वो दाल के पानी से भर जाएगी, लेकिन अगर हम दाल को अच्छे से पका कर मैश करके वो बच्चे को खिलाते हैं तो उस उन्हीं 2 चम्मच में उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, जो कि उसकी इस समय की जरूरत है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जैसे कि डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में सिर्फ बच्चे का पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बच्चे को सही खाने के साथ सही न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, जैसे कि सही तरह से आयरन देना, गुड फैट्स देना, प्रोटीन देना, ताकि एक बच्चे की सही ग्रोथ, सही डेवलपमेंट और एक सही फाउंडेशन बन सके। सो माय डियर पेरेंट्स, बस इन्हीं बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपका मोटिव सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को सही पोषण वाला खाना खिलाना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, जब बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, जहाँ बच्चे को शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किया जाता है खाने से, सो ऐसे में कई बार देखा गया है कि डाइजेशन इश्यूज, एलर्जीज और सेफ्टी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो ऐसे में हर नया खाना इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या गैप देना चाहिए, साथ ही कितने दिन का गैप रखना चाहिए अगर हम बच्चे को एक खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर बात की जाए फूड एलर्जीज की, तो फूड एलर्जी के अर्ली साइन क्या होते हैं जिनको पेरेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, घर में सफाई और हाइजीन का खाने से क्या कनेक्शन है सो दैट कि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
1: ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात। जब हम बच्चे को कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे उस खाने को फेमिलियर होने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई नया खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक रूल लेकर चलें कि एक समय पर आप एक ही खाना उसे खिलाएं और 2-3 दिन के गैप के बाद हम नया खाना उसको टेस्ट कराएं। जैसे आज हमने उसको मैश दाल दिया, तो 3rd या 4th डे पर जाकर हम उसे मैश राइस देंगे, फिर 3 दिन वही देकर और 4th दिन पर हम उसको खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं या दलिया बनाकर दे सकते हैं। इससे आपको समझ आता है कि बेबी को उस फूड की टॉलरेंस है या बच्चे को भी उस खाने का टेस्ट समझ में आता है। खाना बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो उसे डेफिनेटली उससे रिएक्शन होगा। अब उसके सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी या आंखों से पानी बह रहा है बच्चे के, कभी कभी स्किन पर रैश हो जाता है या बच्चा वॉमिटिंग्स करता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे के लिप्स में स्वेलिंग हो सकती है या फेस पर स्वेलिंग हो सकती है। ये सब साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है। तो इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दें और बच्चे को डॉक्टर से मिलवाएं। बच्चा इस समय ग्रो कर रहा है, वो नया खाना एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है इस टाइम पर, तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे के आसपास और खाना खिलाने के वक्त भी हम सफाई का बहुत ध्यान रखें। खाना बनाते समय और उसको खिलाते समय हमारे हाथ साफ हों, बर्तन साफ हों, घर का ताज़ा बना हुआ खाना उसको दें और बॉटल फीड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में। सो जहाँ तक हो सके बॉटल फीड ना दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें देने के लिए। डॉक्टर ने हमें ये बताया एक छोटी सी लापरवाही भी बेबी की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हाइजीन और पेशेंस दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर पेरेंट्स, इन सभी छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेणु खुराना, जहां आज हम जान रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इस दौरान फोर्स फीडिंग क्यों हार्मफुल हो सकती है एक बच्चे के लिए, साथ ही जितने भी वर्किंग पेरेंट आज हमें सुन रहे हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे मैनेज की जा सकती है, उनके लिए कुछ ऐसे इजी ऑप्शंस जो आप बताना चाहें।
1: फोर्स फीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है नॉर्मली हर घर में ही, और पेरेंट्स को बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि वो बच्चे को अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना चाहते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं है और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं तो बच्चा खाने को प्रेशर के साथ एसोसिएट कर लेता है, धीरे धीरे खाने को डिसलाइक करना शुरू कर देता है, उसे एज ए पनिशमेंट समझने लगता है और खाने से बचना चाहता है। इसलिए बेबी के हंगर क्यूज को समझें, इसे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं, माने आप देखें कब वो खाना मांग रहा है या उसको कितनी भूख है और कब वो खाना नहीं खाना चाहता। तो अगर हम बात करें वर्किंग मदर्स की, शुरू शुरू में उनको ये बहुत टफ लगता है, लेकिन काउंसलिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ बहुत इजी बनाया जा सकता है इसको। इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके पहले से रख लेते हैं, और या फिर फैमिली फूड जो हम कुक कर रहे हैं उसमें एक या दो चीजें हम ऐसी बनाते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। सिंपल घर का खाना हम बच्चे को दे सकते हैं आराम से। प्लानिंग में जैसे हमें अगर मालूम है कि हमें दिन में उसको दो फीड देने हैं, या जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो फीड बढ़ता जाएगा, तो वो छोटे छोटे पोर्शन आप प्रेप करके और कुक करके रख सकते हैं, और जो भी केयर गिवर है बच्चे का उसको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है इसमें।
0: सो डॉक्टर ने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ फीडिंग करनी है, और जितने भी वर्किंग मदर आज हमें सुन रही है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप बैलेंस बना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज डॉक्टर ने हमें बताए हैं, इन सभी ट्रिक्स एंड टिप्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को इजी बनाइएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेकर। सो डॉक्टर, अगर आप एक लाइन में पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा जो 6 महीने के बाद अपने बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं?
1: अंजलि, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन नहीं मानती, ये एक बिहेवियरल ट्रांजिशन भी है। सो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस फेज में बच्चा टेस्ट और टेक्सचर से फेमिलियर होता है फूड के, वो अपनी भूख को और फुलनेस को समझता है, ईटिंग एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए फीडिंग को सिर्फ कितना खाया से जज नहीं करना है, हमें उस प्रोसेस पर फोकस करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग कराना है, क्यों समझना है कि बच्चा खाना मांग रहा है या अब उसको भूख नहीं है। बच्चे को कभी भी ओवर फीड ना कराएं और ना ही उसकी भूख को नेग्लेक्ट करें। प्रेशर फीडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। खाते समय बच्चे के आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें, उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, टीवी फोन या बहुत ज्यादा शोर आसपास ना हो, ताकि वो अपने खाने को एंजॉय कर सके। बेबी को खाना एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे खाना वो अपने हाथों से खाएगा तो वो उसके टेक्सचर को समझेगा, अपनी भूख को समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी बच्चे को उसके सिबलिंग से या और बच्चों से कंपेयर ना करें। मैंने प्रैक्टिस में रिपीटेडली देखा है, जहाँ फीडिंग प्रेशर कम होता है वहाँ लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स बेटर होती हैं बच्चों के। सो हमें ध्यान रखना है कि फीडिंग न्यूट्रिशन प्रोसेस के साथ साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की फाउंडेशन भी है, जो असल में उसकी एडल्ट लाइफ की हेल्थ की भी बहुत बड़ी फाउंडेशन है। सो आखिर में मैं कहना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ खाना शुरू करना मत समझिए। ये वो दौर है जहां बच्चा टेस्ट के साथ साथ ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा होता है और भी बहुत नई चीजें सीख रहा होता है। अगर ये फेज पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल किया जाए तो फीडिंग स्ट्रगल नहीं होती बल्कि हेल्थी रूटीन बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बहुत ही खूबसूरत और सिंपल मैसेज डॉक्टर ने आज हमें दिया है, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को याद रखना चाहिए। सो माय डियर न्यू पेरेंट्स, अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल और रियश्योरिंग रहा होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का पहला खाना उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक बहुत जरूरी शुरुआत होती है, और आज हमने जाना कि सही समय पर सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना बच्चे के फ्यूचर हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणु खुराना, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और इतनी सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहां से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड पोषण की पाठशाला में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्या?
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मैं तो मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूबलाइट
2: गिर गया। साले इतनी हंसी, तू कूद गया?
3: अब पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों?
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
4: तुम जितनी कोशिश कर लो सारा होगा कोई।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: हर कहानी के पीछे होती है एक जर्नी और हर जर्नी में होता है एक विजन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मोहन अरोड़ा, जो एक टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने क्रिएटिव प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू ब्रांड्स और आइडियाज को एक नई पहचान देते हैं। वेलकम सर।
1: थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास मुलाकात। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने मोहन अरोड़ा व्लॉग्स की शुरुआत कब और कैसे की? क्या ब्लॉगिंग हमेशा से ही आपका प्लान था?
1: नहीं मैम, ब्लॉगिंग का हमेशा से प्लान नहीं था। पहले तो मैं टिकटॉक पे करता था, लाइक सॉन्ग लगाने उस तरीके से, मतलब गाने वाने टाइप की।
0: जी।
1: बट फिर धीरे धीरे जैसे मैं 10th और 12th में मेरे को आइडिया आया कि इस तरीके की व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब 12th में पास आउट हुआ था ना, तो 6 मंथ का गैप आता है
0: जी
1: 12th और कॉलेज में।
0: जी।
1: तब मैं ये रील स्क्रॉल करता था और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, मतलब वीडियोस देखता था लॉन्ग वाली, तो वहाँ से मेरे को काफी मोटिवेशन मिली और कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है
0: जी
1: और इस तरीके की व्लॉगिंग बना रहे हैं, तो वहीं से मेरे को आइडिया आया कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। बस फिर मैंने कंटिन्यू किया और साथ में कुछ ना कुछ अलग ऐड किया। उनको मैं देखता था कि हाँ इस तरीके की व्लॉगिंग बना रहे, बट मैंने फिर कुछ ना कुछ अलग ऐड किया। यूट्यूब पे ही बनाई लाइफस्टाइल व्लॉग्स, 365 डेज का चैलेंज भी लिया था मैंने
0: जी
1: 2022 में। देन उसके साथ साथ मैंने फिर फूड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी लॉन्ग वीडियोज में यूट्यूब पे
0: जी।
1: फिर मेरे को एक दो कमेंट्स आए कि भाई आप इंस्टाग्राम पे डालो, रील डालो, शॉर्ट का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। तब मैंने वहाँ से कट करके उन्हीं वीडियोस को इंस्टाग्राम पे डाल दी।
0: ओके।
1: और लगभग 1 से 2 मंथ तो मैंने इसी तरीके से कंटिन्यू किया
0: जी।
1: फिर अचानक से एक वीडियो वायरल हो गई बहुत ज्यादा
0: जी,
1: वो लगभग 750,000 ऐसी गई थी,
0: मतलब
1: 7,50,000। और फिर उसके बाद वहीं से और मोटिवेशन आया, वहां से क्या कहते हैं एक दो और शॉप्स वाले हैं उनके कॉल आए कि हमारी शॉप के आगे प्रमोशन करो। तो वो जब किया तो 1 मिलियन प्लस व्यूज वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा और धीरे धीरे कंटिन्यू किया फूड ब्लॉगिंग में 1 मंथ तक। फिर उसके बाद फर्नीचर शॉप हो गई, क्लोथ शॉप हो गई, उनके भी आने लग गए कि हमारी शॉप भी कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को यूनिक लगी, अलग लगी, तो मेरे भाई ने कहा कि ये भी कर सकता है फूड ब्लॉगिंग, ये कंटिन्यू कर रहा है
0: जी।
1: उसके साथ फूड ब्लॉगिंग के साथ ये भी चीज कंटिन्यू करी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो फर्नीचर वाली चीज मेरे को लगा नहीं था कि ये चल जाएगी, वो भी चलने लग गई, क्लोथ्स की भी वीडियो चलने लग गई। बस फिर इसको कंटिन्यू रखा और बहुत सारे अप एंड डाउन आए, आगे आज तक कंटिन्यू चल रहा है।
0: सर, शुरुआत में जब व्यूज कम आते थे तब आपने खुद को मोटिवेट कैसे करा?
1: मैं मोटिवेट मैंने ऐसा करा कि जब व्यूज कम आए और ज्यादा आए ये मेरे को उससे फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जो काम है वो डेली ये है कि शूट करना, एडिट करना और अपलोड करना
0: जी।
1: ये जो देखने वाला है ना कि अप एंड डाउन ये है, ये मैं बहुत ज्यादा कम देखता हूँ, बहुत कम
0: जी।
1: बट हाँ, कभी अगर ऐसे डिमोटिवेट भी होता तो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है फुल कि आप इस चीज को कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, आगे तक बेनिफिट मिल जाएगा, उनको सब पता है इस चीज का
0: जी।
1: तो वो ही मोटिवेट करते रहते हैं, मेन तो मोटिवेशन मेरे को वहीं से आई है।
0: और एक 10 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए कितने घंटे की मेहनत होती है इसके पीछे, मतलब एडिटिंग से लेके शूट तक?
1: मैम 10 मिनट का तो मैं यूट्यूब पे जब बनाता था उसमें ये मान लो कम से कम पूरा दिन तो निकल ही जाता, मतलब 7 से 8 घंटे
0: जी।
1: और उसी में से कट कट करके वीडियो 10 मिनट तक की लानी पड़ती है
0: जी।
1: वो ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग।
0: ओके। मोहन अरोड़ा जी के साथ हम और भी बातें करेंगे, लेकिन वक्त हो गया अभी छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
4: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महा।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन अरोरा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंस्टाग्राम रील्स वर्सेस यूट्यूब ब्लॉग्स, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा चैलेंजिंग लगता है और क्यों?
1: मैम, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरे को यूट्यूब का लगता है, क्योंकि जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था यूट्यूब
0: जी,
1: तब से मैंने 2 साल लगातार वीडियोस डाली और इतनी बड़ी बड़ी, मतलब 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस डाली
0: जी,
1: कभी कभार तो 30-30 मिनट की भी वीडियोस डाली हैं। और उसको बनाने के लिए मेरे को 8 से 9 घंटे लगते थे, फिर उसको 8 से 9 घंटे बनाने के बाद 10 मिनट पे लेके आना पड़ता था
0: जी,
1: फिर वो जब मैं अपलोड करता था व्यूज आते थे सिर्फ और सिर्फ 500, 1000, 800 इस तरीके के, बस 1500, 2000 यहाँ तक। बट फिर मैंने इसको इंस्टा पे डाला कट करके सिर्फ और सिर्फ 40-50 सेकंड की रील्स
0: जी,
1: उसमें मेरे को लगभग 15 से 20 दिन, और मतलब जो कंटिन्यू मैंने इस तरीके की ब्लॉगिंग करी जिसमें से मैं वायरल हो रहा था 15 से 20 दिन
0: जी,
1: और उससे पहले 3 मंथ्स तो मैंने वैसे ही डाली, मतलब कट करके यूट्यूब की वीडियोस
0: जी।
1: वो तो मैम ये मान लो इंस्टाग्राम सबसे मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें 40-50 सेकंड की रील बनानी है, टाइम भी इतना नहीं लगता, 1.5 से 2 घंटे ही लगते सिर्फ और सिर्फ
0: जी,
1: और इसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ मेरे को व्यूज का भी, और भी जो कह सकते हैं कि मनी का भी।
0: ओके, क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट को मना करा हो, भले उसके पीछे आपको अच्छी डील मिल रही हो बट स्टिल आपको वो सही नहीं लगा और आपने उसको मना कर दिया?
1: हाँ मैम, काफी हुआ ऐसे, तो गेमिंग का भी हो चुका है कि गेमिंग का भी आया मेरे पे कि इस तरीके की करनी है
0: जी,
1: बट मुझे लगा वो बोट है, फेक है, इस तरीके की मैंने उसको प्रमोट ही नहीं किया
0: जी,
1: और मुझे भी लगा कि मेरी ऑडियंस के लिए ये चीज अच्छी नहीं है
0: जी,
1: सो अभी तो ये रोक रखा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले टाइम में भी शायद इसे कहीं प्रमोट करूं
0: जी। बिल्कुल, आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अपने व्लॉग्स को दूसरों से अलग बनाने के लिए आप क्या एक्सपेक्टर यूज करते हैं?
1: मैम, कॉम्पिटिशन में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को अपने ब्लॉग्स बनाने हैं
0: जी,
1: किसी और को नहीं देखना, और उसमें यूनिक चीज एड ऑन डेली ही करते रहना
0: जी।
1: एक चीज पे मैं टिका नहीं रहता कि इसी पे, मतलब यही चीज मैं बनाता रहूं, सेम
0: जी,
1: मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूं ताकि और भी अच्छे ब्लॉग्स मेरे बनते जाएं
0: जी। ओके, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन अरोड़ा सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि शूटिंग के वक्त कोई ऐसी फनी या कोई डिफरेंट इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो हम सभी ने कैमरे पर नहीं देखा?
1: मैं वैसे बहुत बार हो चुका है और एक से दो इंसिडेंट मैं ऐसे बताता हूँ जो आप लोगों भी कह सकते हैं हंसी आएगी या फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये गलत हो गया।
0: जी
1: मैं बता दूं, जैसे कि मैं एक से दो कैफे, जैसे एक रोमियो कैफे वहाँ भी गया था
0: जी।
1: तो वहाँ मैंने लगभग 1.5 घंटा लगाया था मतलब शूट करने में प्रॉपर
0: जी।
1: और खाना उन्होंने पूरा रेडी किया, बट जैसी वो शेक लेके आए मेरे लिए कांच के उसमें
0: जी
1: ग्लास में, वो जैसी मैंने हाथ में पकड़ा और इस तरीके की वीडियो बनाने लग गया, वो गलती से मेरे हाथ से स्लिप हो गया
0: जी।
1: और जब वो टूटा, सारे लोग मुझे देख रहे थे जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे, वो चीज मेरे को देख के अंदर से तो हंसी आ रही थी बट बाहर से थोड़ा नर्वस भी था कि यार सब लोग देख रहे हैं, थोड़ी शर्म सी आ रही है
0: जी।
1: बट हाँ ये है कि कैफे वालों ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और जो भी है मतलब खाना भी मैंने इंजॉय करा, काफी अच्छा था।
0: ओके, क्या हम आने वाले वक्त में मोहन अरोड़ा को दिल्ली NCR से बाहर किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर व्लॉगिंग करते हुए देख सकते हैं?
1: हाँ जी मैम, जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा अभी मोटिव है, पहले तो मैंने फरीदाबाद का था
0: जी
1: कि मेरे को पूरे फरीदाबाद में इस तरीके से वीडियोस बनानी है, और बहुत लोग जानते भी हैं कि मैंने लगभग सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ
0: जी
1: फरीदाबाद में जितनी भी शॉप्स हैं
0: जी।
1: बट हाँ अब जो मेरा मोटिव है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और इससे बाहर भी जाना है।
0: हाँ जी,
1: तो नेशनल लेवल पे तो हाँ चलो, मैं मेरे को जो लगता है कि मैं हो जाऊंगा मतलब इस तरीके से कर लूंगा मैं लगभग 6 से 7 महीने में पूरा इंडिया में मतलब कवर करना है। बट हाँ इंटरनेशनल में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1.5 से 2 साल, ये भी मेरा मोटिव है
0: जी,
1: जरूर इसे पूरा करेंगे।
0: ओके, हमें पता है कि आपको खाना बहुत पसंद है क्योंकि स्टार्टिंग की आपकी वीडियोस ही फूड रिलेटेड थी सारी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हो, वहाँ का खाना आपको पसंद ना आया हो बट स्टिल आपको वीडियो प्रमोट करने के लिए वो खाना पड़ा?
1: हाँ ऐसा तो बहुत जगह होता है और मैं रिव्यू भी देके आता हूँ, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी तो हाँ मैं वहाँ बोल भी देता हूँ कि इस तरीके का आप चेंजेस करो, ये करो वो करो, तो वो कर भी देते हैं मैम, और मुझे ये चीज देख के काफी अच्छा लगता है। जगह का मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी जगह ऐसी है
0: जी, जी, जी।
1: बट हाँ मैं रिव्यू देके आया और उन्होंने चेंजेस भी कर लिया, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा।
0: कहीं ऐसा रिव्यू दिया है कि ये खाना ही हटवा दो?
1: नहीं नहीं मैम, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है जब प्रमोशन करते हैं तो ये चीज नहीं कर सकते, और क्योंकि जो सामने वाला है उसको भी बहुत बुरा लगेगा मैम
0: जी। सर जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पे?
1: मैं एक चीज बता दूं, मैंने जब यूट्यूब पे किया था ब्लॉगिंग का
0: जी,
1: तब तो उन्हें हाँ लग, क्योंकि मैं आउटडोर बनाता था सारे ब्लॉग्स
0: जी,
1: तो उन्हें इतना वो पता ही नहीं था कि ये इस तरीके के यूट्यूब पे बना रहा है या ये कुछ है। बट जब मैंने इंस्टा पे बनाई, क्योंकि मैं वॉइस ओवर रील्स बनाता हूँ
0: जी,
1: तो जब घर में स्क्रिप्ट लिख के प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है तो पहले दिन तो वो भी हंसते थे कि ये क्या कर रहा है। बट हाँ जब उन्हें देखा कि हाँ चलो अच्छा है, ये चीज अब डेली कंटिन्यू रहेगी हमारे घर में और ग्रोथ भी हो रही है इसकी अच्छी, तो उन्होंने काफी सपोर्ट करा और ये देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा और अंदर से मोटिवेशन आई। सो डेली आज से लगभग 2 साल तो हो ही चुके हैं इंस्टाग्राम पे।
0: ओके, वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहन अरोड़ा। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कोई जॉब भी मैनेज कर रहे हैं या यही आपका प्राइमरी फोकस है?
1: मैम, जॉब मैंने 2 साल करी है और जॉब भी मैं अगर बताना चाहूँ तो प्रॉपर जिसे कहते हैं वर्करी
0: जी,
1: वो करी है मैंने। 10 से 12 हजार मेरी सैलरी थी पर मंथ।
0: ओके।
1: और वहीं से मेरे को ये आया था थॉट कि मेरे को यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है।
0: ओके।
1: और फिर मैंने YouTube पे तो 2 साल बनाया, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने Instagram पे करा तो वहाँ से मेरे को जो प्रॉफिट हुआ जॉब से ज्यादा उसमें होने लग गया था
0: जी।
1: तो वहीं से फिर मैंने घर वालों को कहा कि इस तरीके से मेरे को जॉब छोड़नी है।
0: okay.
1: मम्मी का तो रिएक्शन यही था कि क्यों छोड़नी है, बंदी बंदाई सैलरी आ रही है जो, क्योंकि देखो पुराने जो पेरेंट्स है उनका यही थॉट होता है
0: जी।
1: तो बस फिर पापा ने तो मम्मी को कहा कि छोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इस चीज में बेस्ट कर लेगा। और भाइयों का भी सपोर्ट था, भाइयों ने मम्मी को बनाया बड़ी मुश्किल से।
0: ओके।
1: बस फिर मैंने छोड़ दी जॉब जब मेरे 8000 फॉलोअर्स थे।
0: ओके, नाइस। तो आपको कैसे समझ आया कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है?
1: मैम, मेरे को देखो, मैंने जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और उस समय जो मेरी रील पे बार बार फीड में आ रही थी वो फूड ब्लॉगिंग ही आ रही थी
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि जैसे मेरे को पसंद आ रही है और लोगों को भी आएगी पसंद
0: जी।
1: मैंने वो बनाई और अलग तरीके से बनाई जो कि देख के मुझे तो अच्छा ही लगा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी चेक करवाई कि ये देखो एक बार है, सही है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये अपलोड करी
0: जी।
1: और जब ये अपलोड करी तो ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा। वीडियोस जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख 8 लाख ऐसी भी जान लग गई थी
0: जी।
1: तो वो चीज देख के मुझे अच्छा लगा और जितनी भी ऑडियंस है सब कनेक्ट होने लग गए फिर धीरे धीरे।
0: ओके। जब आपका पहली बार कॉन्टेंट वायरल हुआ था, आप उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
1: मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे 2019 में ना एक रील बनाई थी मैंने, टिकटॉक पे बनाई थी वीडियो
0: जी।
1: तो उसपे 10,000 व्यूज गए थे
0: जी।
1: उसे देख के मैं क्या, मेरे भाई खुश हो गए, मैं उन्हें दिखाने लग गया कि भाई 10,000 व्यूज गए। फिर जब मैंने देखा कि भाई इस पे तो 7 लाख गए, अब जब मैंने ये वाली करी रील तो इस पे अंदर से और अच्छा लगा और बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा उस दिन
0: जी।
1: बस फिर आगे कंटिन्यू हो गया इसका आज तक।
0: और जो कंटेंट क्रिएशन को एक फुल टाइम जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे?
1: मैं तो कहूंगा कि बेस्ट चीज है अगर आप फुल टाइम भी देख रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, बेस आपको बनाना पड़ेगा थ्रू जॉब।
0: ओके।
1: या कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस है उसके थ्रू आप कर सकते हो
0: जी।
1: अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो साथ साथ ये भी चीज करते रहो, या जॉब कर रहे हो तो साथ साथ आप ये भी करते रहो।
0: okay.
1: और जब आपको लगे कि जॉब से ज्यादा या बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट इसमें हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यू रखो फुल डे के लिए।
0: ओके। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि मेरा तो सपना था कि रेडियो में आऊं, इस तरीके से मेरी भी आवाज आए जब मैं अपनी गाड़ी में सुनता था
0: जी।
1: तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, अपना टाइम और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलती हूँ आपसे अगले वीकेंड एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है
1: यस पापा
0: हेलमेट पहनना है
1: ओके पापा
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे
1: नो पापा
0: यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बना है दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर
3: डियरा किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है तो आज से ही सुनो पर जज मत करो
4: चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन
5: चला जून शुरू हो जा
6: हो गया शुरू तो अर्ज किया है
5: ओहो अर्ज होता है अर्ज
6: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस
5: इरशाद
6: अरे आगे खाली हो जाएगी
5: क्या
6: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं
5: कौन हम
6: रोडवेज वाले
5: ओके
6: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं
5: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे
6: क्या बात कर रहे
5: हाँ।
6: आगे सुनो
5: सुनाओ
6: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं
5: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी मैं तो चली तू बोलता रहा
6: अरे सुनो
5: बाय

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
4: जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
5: चाय की चुस्की हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। सोच होती है, इंटेंशन होता है, पर उसे रियलिटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने समाज सेवा को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक लगातार कमिटमेंट के रूप में जिया है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर राजकुमार अग्रवाल जी के बारे में, जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के प्रोजेक्ट चेयरमैन है और साथ ही साथ भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय सेवा संयोजक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: तो सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये संस्था जो है वो कितनी पुरानी है।
2: धन्यवाद। ये जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारी एक संस्था है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद 1963 से दिल्ली से शुरू हुआ
1: जी।
2: आज हम 2026 में है तो लगभग 63 साल से भारत विकास परिषद इस तरह की सेवा के काम कर रहा है। और साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बना हुआ है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि 2022 में हमने शुरू किया
1: जी।
2: और इस तरह के पूरे देश में 12 हॉस्पिटल और चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में एक हमारा बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, एक हमारा चंडीगढ़ में चल रहा है, एक हमारा कोटा में चल रहा है, एक हमारा लुधियाना में चल रहा है, एक हमारा पटना में चल रहा है। तो इस तरह कुल मिला के 12 इस तरह के हॉस्पिटल पूरे देश में चल रहे हैं जो कि पूरे देश की जनता को समर्पित है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कहते हैं कि हर चैरिटेबल काम जो है वो एक सोच के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। क्या ऐसा कोई वक्त था जब आपकी सोच बिल्कुल बदल गई हो अपने ट्रस्ट को लेकर?
1: देखिए, ऐसा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो हॉस्पिटल बना है, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था। हम भारत विकास परिषद के जो फरीदाबाद में जो हमारी ब्रांच है उसके कार्यकर्ताओं का एक सपना था।
0: हाँ जी।
1: जो 30 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कभी ऐसा समय आएगा तो हम फरीदाबाद में एक सेवा के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे, तो मुझे लगता है इसमें सभी की मेहनत लगी हुई है। और सोचा तो था कि हम बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि जैसा सोचा था उससे ज्यादा और उससे जल्दी हम लोगों ने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया।
0: जी जी।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लगता है मुझे फरीदाबाद के जो लोग हैं उनका प्यार है जिसकी बदौलत आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
0: जी सर, मैं टीम के बारे में जानना चाहूंगी, कितनी टीम है आपके पास?
1: जो हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट चला रहा है, उसका नाम भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है। इसमें लगभग 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स में मैं कह सकता हूँ जो मौजूद लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, वो आज हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम कहीं भी इस हॉस्पिटल में चैरिटेबल वर्ड यूज नहीं करते हैं।
0: ओके।
1: सिंस ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट ही है, पर हम उसको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बोलते हैं।
0: ओके।
1: कई लोगों के मिथ होता है चैरिटेबल होगा तो कैसा होगा, कैसे डॉक्टर होंगे, सफाई होगी, सुविधाएं होंगी, नहीं होंगी। तो हमने एक प्रयास किया है, जैसे मैंने कहा हमारे 100 जो हमारे मेंबर है उन्होंने मिलकर एक सपना देखा था कि ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे गरीब से गरीब इंसान हमारे हॉस्पिटल में आके उसको ये लगे कि हम 5-star फैसिलिटी ले रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और उसी को सोच को बड़ा करते हुए ये हॉस्पिटल खड़ा हुआ है।
0: जी।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं?
1: देखिए, ये अगर मैं सुविधाएं की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल में हमने डायलिसिस शुरू किया। आज आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है उसके लिए डायलिसिस लोगों को कराना पड़ता है। अब डायलिसिस सेंटर 20 बेड का हमारे हॉस्पिटल में है, जिसमें हम लगभग 700 से ज्यादा पेशेंट को हर महीने बहुत ही कम रेट पे हम डायलिसिस करते हैं। और हमारे यहाँ पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मेमोग्राफी मशीन, जो महिलाओं के लिए, हमको सबको पता है जिस तरह कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, तो हर महिला को 40 साल के बाद वो टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिससे कि हम कैंसर की बीमारी से हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास है, हार्ट सेंटर हमारे पास है, जिसमें इको, टीएमटी, होल्टर, ईसीजी है, हमारा अपना पैथ लैब है जिसमें हम सब तरह के टेस्ट करते हैं, हमारे पास सब तरह की ओपीडीज की फैसिलिटीज है, हमारे पास सभी तरह के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट भी हम अपने हॉस्पिटल में कर पाते हैं, गायनी के प्रोसीजर्स है, ऑर्थो के सारे प्रोसीजर्स है, इवन कैंसर के जो कीमो के जो पेशेंट आते हैं वो भी हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। अभी हमने पिछले 6 महीने पहले इस हॉस्पिटल में, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ा, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ती गई,
0: बिल्कुल,
1: उनको लगा कि अभी हॉस्पिटल ठीक काम कर रहा है तो यहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए।
0: हाँ जी।
1: तो हमने यहाँ पे आईसीयू बनाया 7 बेड का, 50 बेड का आईपीडी जनरल वार्ड बनाया, फिर हमें लगा कि महिलाओं के लिए जो डिलीवरीज होती हैं वो भी एक अच्छा बनाया जाए, एक हाई स्टैंडर्ड का बनाया जाए, तो हमने डिलीवरी के लिए मैटरनिटी बनाया, एनआईसीयू बनाया, तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज को लेकर ये हॉस्पिटल धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। बेसिक फैसिलिटीज में जैसे हम फार्मेसी शॉप चलाते हैं, बहुत कम रेट में, मतलब कोशिश करते हैं कि जो दवाइयाँ हम खरीद रहे हैं उससे सिर्फ ऐसा 5-7% हम अपने खर्चा चलाने के लिए, बाकी हम सब पेशेंट को दे दें। मैंने आपसे कहा कि हम अपना कैथ लैब चला रहे हैं, अभी हमने न्यूरो फिजियो लगाया है, जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको न्यूरो से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, जैसे अब अगर आप, मैं कहूँ स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी है या किसी को पैरालिसिस हो गया, तो ऐसी बीमारी के लिए बहुत लंबा इलाज चलता है, वो नॉर्मल फिजियो में नहीं होता, उसके लिए हमने स्पेशल, मैं समझता हूँ फरीदाबाद में ऐसा इकलौता न्यूरो फिजियो हमने बनाया है, जो बहुत ही कम पैसे में एक अच्छी क्वालिटी का हम ये सर्विस यहाँ पे दे पाए। तो धीरे धीरे काम हमारा बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा हम पे बढ़ रहा है। हम अब अगले 4 महीने में यहाँ पे हार्ट सेंटर बना देंगे फुल, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सारी सुविधाएं हम देने वाले हैं, एमआरआई हम लगाने वाले हैं। आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ऐसा है, जो गरीब लोग, जो बीपीएल परिवार, उनको कार्ड इशू होता है, उनका इलाज बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा मुश्किल होता है, तो जिस दिन से हमने आयुष्मान लिया, हमने पूरे फरीदाबाद के लोगों को कहा है कि अब आयुष्मान के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में आप आइए, आयुष्मान अगर आप कार्ड आपके पास है तो सारी फैसिलिटीज हम आयुष्मान के माध्यम से लोगों को हम यहाँ पे दे रहे हैं।
0: जी जी, क्या बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: फंडिंग का प्रेशर सबके साथ होता है, आप कैसे ये जो प्रेशर है उसको हैंडल करते हैं, साथ ही साथ अपनी वैल्यूज को बनाए भी रखते हैं, दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं?
1: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, दो बातें हैं। एक है फाइनेंस को लेकर। देखिए फाइनेंस फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद का शुक्रगुजार हूँ, फरीदाबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। फरीदाबाद के जो बड़े लोग जिनका मैंने नाम लिया है, उन्होंने हमें तन मन धन से सहयोग किया
0: जी।
1: ये हॉस्पिटल डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद का तो है, मैं हमेशा कहता हूँ ये हॉस्पिटल फरीदाबाद के लोगों का है। जिस तरह फरीदाबाद के लोगों ने दिल खोल के हमारे को पैसे में मदद करी है, तभी हम 3 साल में हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फरीदाबाद के सभी लोगों का। फाइनेंस का प्रेशर तो रहता है, पर अच्छे काम कर रहे हैं तो सारे काम हो जाते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आपको पूरे फरीदाबाद के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है
1: 100%।
0: सर क्या आपको लगता है कभी ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ा जहां समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत है, और आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया?
1: जैसे मैंने कहा कि ये मेरा अकेला का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हमारी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है
0: जी।
1: तो जब भी हमें ऐसा लगता है ऐसी समय ऐसा कोई चुनौती ऐसा कोई चैलेंजेस आते हैं तो पूरी टीम बैठती है, बातचीत करते हैं। पर मैंने एक चीज अच्छी है, जब से इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया है समस्याएं तो आई है, पर जितनी समस्या आई है उससे जल्दी समस्या का समाधान हुआ है। तो मैं इसका पूरा श्रेय जो है मेरी टीम को देता हूँ जिन्होंने सूझबूझ से इसका काम बहुत बखूबी रूप से इस प्रोजेक्ट को चलाया है।
0: जी जी, अब आप बार बार टीम की बात कर रहे हैं, बिकॉज वॉलंटियर्स का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उन्हें मैनेज करना इजी नहीं होता। ऐसा क्या है जो लोग इस बारे में समझ नहीं पाते?
1: देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका काम अच्छा होता है, जब लोग आपको काम करते हुए देखते हैं
0: जी,
1: और उस काम से आपको खुशी मिलती है या उस काम से संतुष्टि मिलती है, तो वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है
0: जी।
1: अगर मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आ रहा है
0: जी,
1: और मैं सिर्फ 200 रुपए में ओपीडी में उसका अच्छा इलाज कर पा रहा हूँ, जब वो बाहर निकलता है हंसते हुए निकलता है, तो मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं का मन खुश हो जाता है कि चलो जिस उद्देश्य को लेकर जिस सोच से लेकर हमने इस हॉस्पिटल को बनाया था उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती है, पर मुझे लग रहा है कि हाथ पकड़ने वाले लोग ज्यादा है हमारे, साथ देने वाले लोग ज्यादा है।
0: अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में, बिकॉज लोग इसके बारे में बात करते हैं पर उसको फॉलो करना उतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि लोग सच में आप पर ट्रस्ट करें, सिर्फ कागज पर नहीं?
1: जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप कहीं जाते हैं आप वहाँ की सुविधाओं को देखते हैं। सपोज कोई भी आदमी कोई पेशेंट हमारे यहाँ आता है, वो उसको किसी

0: से लेना देना नहीं होता, वो अपने काम से आता है। उसको लगता है मैं आया यहाँ पे, मैंने पर्ची कटवाई 200 रुपए की, मैं ओपीडी के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बहुत कम पैसे में मेरा टेस्ट कराया, जितनी जरूरत है उतना ही टेस्ट कराया, और मैं 2-3 दिन में जितना उसकी परेशानी है वो मैं ठीक हो गया। तो उसका भरोसा, उसका विश्वास हम पे बनता है
1: जी।
0: उस भरोसे विश्वास से जब बनता है तो वो 10 को कहता है कि मैं वहां गया था और मैं 200 रुपए में मैंने अपना इलाज कराया और मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा हमारे लिए रेफरेंस है। मतलब कहते हैं ना, जब किसी कोई व्यक्ति अपने मुंह से 10 जगह बढ़ाई करे तो उससे लगता है कि वो संतुष्ट है। अगर वही व्यक्ति अगर 10 जगह किसी संस्था की बुराई करे तो लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है
1: जी।
0: तो हम तो ये मानते हैं जितने पेशेंट आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं।
1: क्या बात,
0: उन्हीं की बदौलत ये हॉस्पिटल आज हम महीने में लगभग 7,000 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं
1: जी।
0: इन मंथ 7,000 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं
1: जी।
0: हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था। तो सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू जो जिन लोगों ने हमें ट्रस्ट किया, उनका धन्यवाद।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।

0: सर, कुछ जो आपके वहाँ पेशेंट आते हैं उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आज भी आपको याद हैं, जिनके बारे में आज आप बात करना चाहें तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी।
1: देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, अनगिनत अनुभव है, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे आँखों का काम करते हैं, मैंने हमारे यहाँ कैटरेक्ट की सर्जरी होती है,
0: okay.
1: तो अभी तक हम लोग 2400 आँखों के ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से 650 ऑपरेशन हमने निःशुल्क किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया।
0: okay.
1: हमने आज भी अपने हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बोला हुआ है कि कोई पेशेंट अगर आता है और उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है तो वहाँ से वो वापस नहीं जाएगा, उसका आँखों का ऑपरेशन करके ही भेजेंगे।
0: क्या बात।
1: तो ये हॉस्पिटल, मैं बार बार कहता हूँ, ये सेवा केंद्र है। लोग उसको हॉस्पिटल बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है तो हम जितना हमसे हो सकता है
0: उससे ज्यादा किया जाए,
1: ज्यादा करने का प्रयास करते हैं।
0: जी जी,
1: बहुत। जैसे अभी इस वर्ष हम लोगों ने एक फरीदाबाद के लिए हमने एक टारगेट लिया है कि हम 2026-27 में 500 लोगों का आंखों के ऑपरेशन फ्री करेंगे।
0: क्या बात है।
1: ऐसे बहुत सारे अनुभव है, मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है आपका बहुत टाइम लगेगा। तो अच्छे अनुभव है
0: जी जी जी,
1: पर साथ साथ हम प्रयास और कर रहे हैं कि हम अपनी सेवाओं को और बेहतर करें।
0: हाँ जी, क्या बात है। सर, क्या आपने किसी फंडिंग या पार्टनरशिप को मना किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट था?
1: हमारा सीधा ये मानना है कि आज बहुत सारे लोग हमें फाइनेंशियल ऑफर करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम का ये मानना है, पैसे तब लेने चाहिए जब आपकी आवश्यकता हो। अगर हमें आज जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेते हैं, जब जरूरत ही हम लोगों के पास गए, लोगों ने हमें दिया। तो बहुत सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है और मुझे लगता है आज हमारा काम पैसे से नहीं रुक रहा, बट द सेम टाइम, क्योंकि देखिए ये हॉस्पिटल लंबे समय तक चल रहा है
0: जी,
1: तो पैसा लोगों से मांग कर नहीं चलाना, हमने अपनी सुविधाओं को बेहतर करना है। जो लोग आ रहे हैं उनका अच्छी तरह से इलाज हो जाए, उनके दिए हुए जो फीस है उससे हमारा हॉस्पिटल चले।
0: क्या बात।
1: ना कि हम लोगों से मांग के चलाए
0: जी।
1: मैंने आपको पहले कहा है कि फरीदाबाद के लोगों का जितना सपोर्ट मिला है वो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
0: क्या बात है। सर, कहते हैं कि हर कोई इंसान जो चल रहा है उसकी एक मंजिल तय होती है, जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है उसकी मंजिल क्या है, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं कि आप इन इन क्षेत्रों में भी बदलाव करें?
1: देखिए, नर सेवा नारायण सेवा आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा जितनी इस हॉस्पिटल में हमारी स्पेस है, जितना हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद इस हॉस्पिटल में जगह की कमी पड़ेगी। बट क्योंकि हम लोगों की निगाहें हैं और लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं भी हैं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आपको कैंसर पे काम करना चाहिए, और कैंसर अभी ऐसा मतलब घातक बीमारी हो गया कि हर दूसरे घर में कोई कैंसर का पेशेंट निकल रहा है, और ये बहुत महंगा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, लोगों की रेंज से बाहर हो गया।
0: बिल्कुल।
1: तो अगला प्रोजेक्ट हम जब करेंगे तो ऐसा मैं फिर टीम का नाम ले रहा हूँ, पूरे टीम का मन है कि अगर ऐसा कोई समय आया और प्रभु ने इच्छा रखा तो कैंसर पे गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और अभी वक्त है इजाजत लेने का, लेकिन जाते हुए आपका क्या मैसेज है हमारे फरीदाबाद के लोगों के लिए, हमारे रेडियो महारानी के लिसनर्स के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले धन्यवाद रेडियो महारानी का, खास करके बीआर भाटिया जी का, पूरी टीम का, कि इतना अच्छा सोशल काम आप कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम पूरे NCR के लोगों से जुड़ रहे हैं। आज हमने अपनी बात रखी है। जहाँ तक डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का सवाल है, तो लोगों से ये कहूँगा, पहले तो लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर भी परिवार में शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, तो आप कभी भी डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र सेक्टर 8 में हम लोग हैं, पुलिस थाने के साथ में हमारा बिल्डिंग है, कभी भी आइए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं, हमारा 7 डेज रहता है, 24/7 इमरजेंसी हमारे पास है, तो कभी भी किसी को जरूरत पड़े हम हमेशा तत्पर तैयार हैं।
0: क्या बात है। धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए।
1: थैंक यू, धन्यवाद
0: जी। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, सिर्फ एक 13 साल की लड़की और उसके सामने हजारों लोग, लाइट्स और कैमरा, फिर एक ऐसी आवाज जो सबको चुप कर दे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है सुनिधि चौहान की, जिन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ गाएंगी और सिर्फ जीतेंगी। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम था निधि चौहान। पापा थिएटर आर्टिस्ट और मम्मी घर का काम संभालती थी। घर में म्यूजिक का माहौल था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची एक दिन इंडिया की सबसे पावरफुल फीमेल वॉइस बनेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सुनिधि स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। स्कूल फंक्शंस, लोकल शोज, जहां भी मौका मिलता वहां गा देती और लोग बस देखते रह जाते। फिर आया 1996 का एक शो, मेरी आवाज सुनो, एक सिंगिंग रियलिटी शो। 13 साल की सुनिधि ने उस शो को जीत लिया। तब जज थी लता मंगेशकर जी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जीतने के बाद सुनिधि और उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए। सपना था बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का, लेकिन मुंबई सपने पूरे करने से पहले उन्हें तोड़ता भी है। कई दिन स्ट्रगल में गुजरे, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, वेटिंग, रिजेक्शन। फिर एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव ने उनकी आवाज सुनी और 1999 में आई फिल्म मस्त, सॉन्ग था रुकी रुकी सी जिंदगी। बस यहीं से सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड में गूंज उठा। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली जंग बाकी थी। और कैसे उन्हें सक्सेस मिला और कैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, करेंगे इसके बारे में बात। मगर इसका

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन्स हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसको ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं, तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपकी थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज़ अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो, यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ किसी शॉर्टकट के फेवर में नहीं होती। आप चाहो मेहनत करो फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। आज बिजनेस अनप्लग में मैं किसी नाम से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सम स्टोरी डिजर्व पेशेंस, उन्हें धीरे धीरे खुलना चाहिए। मैं हूँ गीत एंड हियर वी टॉक अबाउट पीपल जो ओवरनाइट सक्सेस के पोस्टर पर नहीं आते, लेकिन जिनकी जर्नी रियल होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी लाइफ में रिसोर्सेज कम थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा। बैकग्राउंड सिंपल था, फैमिली भी सिंपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी थी। फॉर्मल एजुकेशन एक पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई, नॉट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था बट बिकॉज सर्वाइवल केम फास्ट। जब आपको चूज करना पड़े ना बिटवीन डिग्री एंड डेली नीड्स, तो ड्रीम्स थोड़ा वेट पर चले जाते हैं। इस इंसान ने भी वही किया, फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि काम मिल सके। अर्ली इयर्स में इनको ये समझ आ गया था कि कंफर्ट जोन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो काम मिला वो किया, नो ईगो नो कंप्लेंट्स। 2 साल तक पूरी सिंसेरिटी के साथ इन्होंने ट्राई किया, बट बिजनेस डजंट ऑलवेज रिवॉर्ड अफोर्ड इमीडिएटली। वो वेंचर फेल हो गया एंड दैट फेज वॉज रियली टफ। पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और खुद से एक सवाल, अब आगे क्या। देयर वॉज अ डे जब बेसिक थिंग्स भी स्ट्रगल बन जाती, सब एक साथ हैवी लगता, और यही वो वक्त होता है जहाँ लोग रुक जाते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ नेगेटिव लग रहा था तब इस इंसान ने एक सिंपल चीज नोटिस की, चाहे लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग एक चीज एंजॉय करना नहीं छोड़ते, समथिंग टेस्टी, समथिंग कम्फर्टिंग। फूड इज इमोशन, और जब इमोशन समझ आए तो बिजनेस भी डायरेक्शन दिखाता है। अभी ये सिर्फ एक थॉट था, एक ऑब्जर्वेशन, एक्शन अभी बाकी था। कैसे एक ऑर्डिनरी स्पेस जैसा एक सिनेमा हॉल एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ ने इजी मोड कभी ऑन ही नहीं किया। अब कहानी थोड़ी और रियल होने वाली है। बिजनेस फेल हो चुका था, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली प्रेशर में थी। इस फेज में इस इंसान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा, बस एक चीज की, काम। जो काम मिला वो किया, कभी एक सिनेमा हॉल के अंदर, कभी उसके बाहर, कहीं काउंटर्स पे हेल्प, कहीं पोस्टर चिपकाना, कहीं सीट रिपेयर, कहीं छोटी मोटी मेंटेनेंस। सैलरी ज्यादा नहीं थी बट इट वॉज ऑनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली ये वही स्टेज होती है जहाँ ईगो या तो टूट जाता है या फिर कैरेक्टर बन जाता है। लाइफ यहाँ भी स्मूथ नहीं थी, रेंट के इश्यूज, बेसिक एक्सपेंसेस का स्ट्रेस, इतना कि एक टाइम पर घर छोड़ना भी पड़ा। इमेजिन दैट मोमेंट जब आप सिर्फ इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते हो, बट स्लोली हार्ड वर्क नोटिस होने लगा। सिनेमा हॉल की कैंटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड इनकम। इट वॉजंट बिग मनी बट इट वॉज स्टेबिलिटी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रोज लोग मूवी देखने आते, हंसते, चिल करते और इंटरमिशन में एक ही चीज ढूंढते, कुछ खाने की। ये इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। लोग क्या पसंद करते हैं, कौन से फ्लेवर्स चाहते हैं, कौन सी चीज रिपीट होती है, विदाउट एनी MBA, विदाउट एनी फॉर्मल रिसर्च, बस रियल लाइफ डेटा। और यहीं पे पहली बार दिमाग में इनके एक थॉट आया, व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस एक आइडिया था। और आइडियाज अक्सर सबसे पहले चुप होते हैं। और इस पॉइंट पर ना कोई ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इन्वेस्टमेंट का बैकअप, बस एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग विल कि इस बार कुछ अलग ट्राई करना है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत होम मेड लेवल से स्टार्ट होती है, कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट लोगों का फेवरेट बनने लगता है, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। गाना सुनते हैं, पहले गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सपने, एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपको एक जर्नी सुनाने वाली हूँ, बिना नाम बिना ब्रांड, सिर्फ स्ट्रगल चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन की कहानी। अब टाइम है उस नाम को सामने लाने का जिससे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज चंदू भाई वीरानी, फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स। यस, वही बालाजी वेफर्स जिसके पैकेट्स आज ऑलमोस्ट हर घर, हर शॉप, हर एज ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। सोचो, जो सफर एक सिनेमा हॉल की कैंटीन से स्टार्ट हुआ, आज वो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बना दिया। आज बालाजी वेफर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करती है। गुजरात से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नेशनल प्रेजेंस रखता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेफर, सेव, नमकीन रेंज हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ में है और ये प्योर नंबर्स हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन जहां 5000 लोग काम करते हैं। सोचो, उस इंसान को जो कभी रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज हजारों फैमिली की आशाएं उसके विजन से जुड़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक, रिटेल रीच, एवरीथिंग बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, नो ओवरनाइट मैजिक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालाजी वेफर्स ने कभी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। प्रोडक्ट ने खुद अपना काम किया, टेस्ट ने मार्केटिंग संभाली। चंदू भाई वीरानी आज भी सिंपल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है बल्कि ट्रस्ट का था। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी, ट्रस्ट ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑन पीपल। और शायद इसीलिए बालाजी वेफर्स सिर्फ मार्केट में नहीं, लोगों के रूटीन में भी है। तो क्यों ना अभी एक गाना सुन लिया जाए। गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी, बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट वेफर्स, इट्स अबाउट डिसीजन। सो स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

चलते का। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा पॉज लिया जाए और उनके चाइल्डहुड में डाइव किया जाए। इनका चाइल्डहुड दरअसल फ्लैशी नहीं था, नो बिग ड्रीम्स, नो बिग एक्सपोजर, बस एक सिंपल सा घर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में सब कुछ इजीली नहीं मिलता है। स्कूल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी, बट प्रायोरिटीज अलग थी, फैमिली फर्स्ट, सर्वाइवल फर्स्ट। बचपन में ही ये सीख मिल गई थी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जरूरी है वो करना पड़ता है, और शायद यही अर्ली लर्निंग बाद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और स्केल कहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये है, बीच में ऐसा क्या किया गया जिसने एक स्मॉल सेटअप को एक सॉलिड बिजनेस बना दिया? बिकॉज ऑनेस्टली आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। बालाजी वेफर्स के केस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिमांड कम हो, चाहे मार्जिन थोड़े टाइट हो, टेस्ट और कंसिस्टेंसी कभी नेगोशिएट नहीं करी जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, स्लो बट कंट्रोल ग्रोथ, नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो चेजिंग ट्रेंड्स, जो प्रोडक्ट चला उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा कि सब कुछ एक साथ करना है, फोकस क्लियर था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग नॉइज कम रखा गया, नो फ्लैशी कैंपेन्स, नो ओवर प्रॉमिसिंग एड्स। प्रोडक्ट बोला, कस्टमर ने ट्रस्ट बिल्ड किया और वर्ड ऑफ माउथ ने ब्रांड को ग्रो किया। यह अप्रोच थोड़ी ओल्ड स्कूल लग सकती है बट एक्सट्रीमली पावरफुल है। बालाजी वेफर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बहुत ग्राउंडेड रहा, लोकल मार्केट्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया और फिर आगे बढ़ा। ये स्ट्रेटेजी ये प्रूव करती है कि नेशनल बनने से पहले लोकल होना बहुत जरूरी है बॉस। और एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत स्टैंड आउट लगती है, पीपल मैनेजमेंट। कंपनी सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्री से नहीं चलती, लोग चलाते हैं। और जब आप हजारों लोगों के साथ काम करते हो तो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, कल्चर में भी होनी चाहिए। यहीं पे बालाजी वेफर्स एक बिजनेस से ज्यादा एक सिस्टम बन जाता है। नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। और शायद इसी वजह से ये ब्रांड डिकेड्स के बाद भी रेलेवेंट है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। We'll be right back.

0: जाने का मलाल। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो। स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो वो ये होगी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंस। और आज हमने जिस जर्नी की बात की ना उसमें कोई शॉर्टकट था ना कोई मिरेकल मोमेंट। ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, ये सिखाती है कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेशर में भी क्लैरिटी मेंटेन की जाए, कैसे ग्रोथ के चक्कर में कोर को लूज न किया जाए। एक सिंपल माइंड सेट, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर इंटेंट क्लियर है तो स्केल टाइम के साथ आता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपके डिसीजन करते हैं। और आज जब हम बिग नंबर्स, बिग फैक्ट्रीज और बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक फेज के बाद आता है। पहले फेज में सिर्फ पेशेंस होता है और प्रोसेस। और बिजनेस अनप्लग्ड का पर्पस भी यही है, सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज की स्टोरी से आप एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये हो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड स्टे ऑनेस्ट टू द प्रोसेस। मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कल फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ, एक और ग्राउंडेड जर्नी के साथ। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप बिलीविंग और कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: water save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

पर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहां सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ शोर नहीं होता पर आवाज़ होती है, जहाँ लोग तो कम बोलते हैं पर पहाड़ ज्यादा कहते हैं। आज की कहानी आपको लेकर आई है अरुणाचल प्रदेश। आज की कहानी आपको लेकर जा रही है जीरो बैली 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर में जिसकी मंजिल बेहद खूबसूरत है। वो कहा है कि कुछ जगहें शोर से नहीं पहचानी जाती, वहां खामोशी ही नाम होता है। सोचो एक ऐसी वैली जो दिखावे के लिए सुंदर नहीं पर धीरे धीरे दिल में उतर जाए। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ जीरो वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये वैली सी लेवल से लगभग 1500 मीटर ऊपर है। और इतना ही नहीं, ये जगह यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। वो कहा है कि जीरो को समझने के लिए यहाँ रुकना पड़ता है, सिर्फ देखना काफी नहीं। और कहा जाता है कि जीरो वैली को और भी ज्यादा खास बनाते हैं अपाताई ट्राइब। वो कहा है कि जीरो वैली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये लोगों की कहानी है। शहर बनते हैं अक्सर इमारतों से और गांव अपनी पहचान से। जीरो वैली में आपको देखने को मिलेंगे अपातानी ट्राइब, जो नेचर के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि इनकी खेती का तरीका बहुत अलग है। पानी, फिश और फसल एक साथ चलती है। और इतना ही नहीं, एक और खासियत है इन लोगों की, यहाँ डेवलपमेंट का मतलब नेचर को जीतना नहीं, समझना होता है। इसीलिए इनकी फार्मिंग का तरीका भी बहुत यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, जहाँ अभी हमने बात की अपातानी ट्राइब के बारे में, जाना उनकी जिंदगी जीने का तरीका। वहीं आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इनके फार्मिंग का तरीका, जो कि कहा जाता है कि बेहद यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक का टैग ढूंढ रही है, वहीं जीरो उसे जी रहा है। कहा जाता है कि अपातानी फार्मिंग सिस्टम बिना फर्टिलाइजर्स, बिना मशीन्स के चलती है। यही रीजन है कि जीरो को वर्ल्ड का बेस्ट सस्टेनेबल मॉडल्स में माना जाता है। वो कहा है कि जो जमीन का ख्याल रखे, जमीन उसे कभी भूखा नहीं रखती। फार्मिंग का तरीका तो पता लगा कि कितना यूनिक है। एक और चीज है जो इस वैली को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है जीरो वैली में म्यूजिक फेस्टिवल। अब जरा सोच कर देखिएगा, इतनी शांति के बीच जब म्यूजिक बजता होगा तो कैसा लगता होगा। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यानी इंडिया का एक यूनिक आउटडोर इंडी फेस्टिवल। ये इतना ज्यादा यूनिक है कि यहाँ लाउड म्यूजिक नहीं, सिर्फ नेचुरल ऑक्यूस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहा है कि यहाँ गाने भी पहाड़ों से पूछ कर बजते हैं। अब बात कर ही रहे हैं जीरो वैली की, तो मौसम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आगे जानेंगे कि आखिर जीरो वैली का मौसम कैसा है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जीरो वैली हर मौसम में अलग लगता है, पर कभी खुद को नहीं बदलता। यही खासियत है इस वैली की। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो चल रहा है कल्चर कारवा। बात कर रही थी जीरो वैली के मौसम के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ का मौसम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। सुबह धुंध होती है, शाम को हल्की ठंड होती है, रात गहरी शांति होती है। वो कहा है कि कुछ जगह वक्त से तेज नहीं चलती, वहां वक्त रुककर सांस लेता है। तो कुछ ऐसी है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली। और जीरो वैली के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अक्सर जीरो वैली आपको बदल देता है। तो आइए जानें कि क्यों जीरो आपको बदल देता है। कहा है कि लोग जीरो घूमने जाते हैं पर वापस थोड़े बदले हुए आते हैं। ये वैली, ये जगह आपको धीमा कर देता है, शायद इसीलिए इसका नाम जीरो रखा गया। यहाँ सिग्नल कम पर कनेक्शन स्ट्रांग होता है। वो कहा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ दिल कनेक्ट होता है। कुछ ऐसा ही है जीरो वैली। अक्सर यहाँ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आते वक्त जीरो को अपने साथ ले आते हैं। जीरो की यादें, जीरो का एहसास, जीरो का मौसम, जीरो की याद, सब कुछ अपने साथ लिए अपने शहर वापस आ जाते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और भी क्या कुछ खास है इससे जुड़े हुए ट्रिविया के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जीरो की अपनी एक अहमियत होती है, जहाँ भी लग जाए बात कुछ और ही हो जाती है। इसीलिए शायद इस जीरो वैली को लोगों से इतना प्यार मिला। कहा जाता है कि एक छोटी सी बात जो जीरो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, यूनेस्को बायोस्फीयर रीजन के पास है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी अरुणाचल की जान है। वो कहा है कि जीरो वैली कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो शोर कम करता है और खुद से मिलवाता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी कभी तेज लगने लगे ना, तो जीरो वैली याद कर लेना। कल्चर कारवा का आज का सफर आपको लेकर आया एक ऐसी वैली की तरफ जिसका नाम ही जीरो था, यानी कि जहाँ रफ्तार की जरूरत ही नहीं, जहाँ लोग खुद से मिलने आते हैं, पहाड़ों से बात करते हैं और नेचर को जानते हैं, जहाँ का म्यूजिक, खाना और लोग सभी बेहद प्यारे हैं। कल्चर कारवा का आज का सफर फिलहाल यहीं खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देखकर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस उनसे जुड़ी यादें और गहरी हो जाती हैं। कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनके किस्से हमेशा बाकी रह जाते हैं। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, जहां हर वीकेंड हम बात करते हैं उन फिल्मों और गानों की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशन बन जाते हैं। और आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्म्स की जिनके गाने जितने खूबसूरत हैं, उनके पीछे की कहानियां उतनी ही इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जहां रिवेंज के साथ साथ एक इंसान का बदलाव भी देखने को मिलता है। और बदलाव की बात हो ही रही है तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मूवी है बदलापुर।
1: लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए, मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद।
0: और इस मूवी की हम बात करें तो पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ रिवेंज की कहानी है, लेकिन अगर आप फिल्म को ध्यान से समझो तो इसका टाइटल ही उसकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता है। बदलापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि बदला से बदलाव तक का सफर था। और शायद इसलिए फिल्म की एंडिंग भी लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दी गई, यानी कि पहले इस मूवी में एयरपोर्ट क्लाइमेक्स प्लान हुआ था, लेकिन जब रेनी एंडिंग शूट हुई तो मेकर्स को लगा उसमें इमोशन ज्यादा नेचुरली फील हो रहे हैं और वही सीन फाइनल रखा गया। और रियलिज्म इतना इम्पोर्टेंट था कि जेल सीन्स जो भी हमें इस मूवी में देखने को मिले वो रियल नासिक जेल में शूट हुए, जहां एक्चुअल इनमेट्स भी मौजूद थे। और मैंने मूवी के बारे में इतना बता दिया आपको, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था यानी कि वरुण धवन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उस इंटेंसिटी के लिए उन्हें स्पेशली कुछ लेयर्ड और इमोशनल फिल्म्स देखने को बोला गया था, ताकि वो कैरेक्टर को और डीपली समझ सके। और इतना ही नहीं, एक और डिटेल जो काफी लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी इस फिल्म में, वो ये थी कि जेल कॉप्स जो इनफील्ड यूज करते हैं वो उस वक्त मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुए थे, लेकिन इस मूवी में देखने को मिले। मतलब फिल्म का हर सीन डिटेलिंग के साथ क्रिएट किया गया था। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में गाना जीना जीना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां सस्पेंस को इतना केयरफुली हाइड किया गया कि क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ कुछ वक्त पहले ही शूट हुआ था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
2: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जिसका क्लाइमेक्स एंड में शूट किया गया, उस मूवी का करते हैं सस्पेंस खत्म और बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, उस मूवी का नाम था एक थी डायन।

और अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेकर्स ने इसे टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये एक मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, इसलिए कहानी को किसी पुरानी हवेली में नहीं बल्कि एक रिलेटेबल वर्ल्ड में सेट किया गया। और सस्पेंस को मेंटेन करने के लिए फिल्म का क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ एक महीने पहले शूट हुआ ताकि डायन की आइडेंटिटी लीक ना हो जाए। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो उसमें लिजार्ड सिंबोलिज्म भी बार बार नजर आता है, क्योंकि फोकलोर के अकॉर्डिंग विचेस अपने रूप बदल सकती हैं। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म की स्टोरी एक्चुअली मुकुल शर्मा की शॉर्ट स्टोरी मोबियस स्ट्रिप से इंस्पायर्ड थी, मतलब फिल्म का हर एक एलिमेंट केयरफुली लेयर्ड था। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में गाना यारम। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसे करेक्टर की जिसका साइलेंस भी काफी कुछ कह जाता है। और जिस मूवी में एक करेक्टर देखने को मिला वो मूवी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। कौन सी थी ये मूवी और कौन सा था ये करेक्टर बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पदक आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जो सिंपल सी दिखती है लेकिन है नहीं, उस मूवी का नाम है तलाश।
1: हम जैसे लोग तो गिनती में नहीं आते, और जो है ही नहीं वो गायब कैसे हो सकते हैं?
2: रात नहीं जागते हैं
1: कि मेरी जगह यहाँ कोई नहीं
2: है।
3: थैंक यू, मुझे नहीं रोजी को बोलो।
1: रोजी? कौन रोजी?
0: तलाश उन फिल्म में से एक है जो धीरे धीरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है, और इस मूवी का सुपर नेचुरल एंगल एक्चुअली एक रियल अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, जो कि जोया अख्तर और उनके फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया था। और अगर हम आमिर के लुक की बात करें तो उनकी मूंछ भी काफी डिस्कशन का पार्ट बनी, क्योंकि कैरेक्टर को थोड़ा सीरियस और मैच्योर फील देने के लिए उस लुक को स्पेशली क्रिएट किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म मुंबई बेस्ड थी, लेकिन इम्पोर्टेंट सीन्स पौंडीचेरी में शूट हुए और अंडर वाटर सीक्वेंस लंदन स्टूडियो में कंप्लीट हुआ। मतलब स्क्रीन पर एक सिटी नजर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मल्टीपल लोकेशंस का कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं विशाल डडलानी और शंकर महादेवन की आवाज में जी ले जरा गाना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां स्टाइल भी था, पावर भी, और डायलॉग के साथ साथ म्यूजिक भी लोगों के दिल में उतर गया। कौन सी मूवी का था ये गाना और कौन सी थी ये मूवी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसा गाना जो सबके दिलों में उतर गया, तो ये गाना जिस मूवी में सुनने को मिला है बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की।
1: सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बम्बई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भी की बिल्ली बन के बैठा है।
2: ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा।
1: क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो।
2: हल्के में मतलब चुप रहो।
0: और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि दो अलग पर्सनालिटीज और दो अलग सोच का सफर भी थी। यानी कि एक तरफ सुल्तान मिर्जा, जिसे अजय देवगन ने प्ले किया और जो रियल लाइफ हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड माना गया था, और दूसरी तरफ सोहेब, जिसका करेक्टर दाऊद इब्राहिम की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड था। मतलब रियल लाइफ और सिनेमा का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्गली नजर आता है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि रणदीप हुडा ने ये फिल्म 3 बार रिजेक्ट की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी कास्ट के बीच उनका करेक्टर शायद प्रॉपरली नोटिस ना हो। लेकिन बाद में डायरेक्टर ने उन्हें काफी कन्विंस किया और वो मान गए। और फिल्म में जो विंटेज कार अजय देवगन यूज कर रहे थे वो उन्हें इतनी पसंद आई कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने वो कार उन्हें गिफ्ट कर दी थी। अगर मुझे भी किसी मूवी में ऐसे ही गिफ्ट मिले तो मैं भी एक मूवी तो जरूर करना चाहूंगी। खैर, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में गाना पी लूं। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज की ये म्यूजिकल जर्नी आपके दिल तक जरूर पहुँची होगी। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाते रहिए और म्यूजिक को सिर्फ सुनिए मत, महसूस भी कीजिए। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: चल अर्जुन शुरू हो जा।
5: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
4: इरशाद।
5: अरे आगे खाली हो जाएगी।
4: क्या
5: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
4: कौन हम?
5: रोडवेज वाले।
4: ओके।
5: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
4: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ।
5: आगे सुनो।
4: सुनाओ।
5: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
4: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
5: अरे सुनो,
4: बाय।
5: मीठे लस्सी तो बोलता।
6: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
7: सुन भाई सुरेंद्र।
8: हाँ भाई सुरेंद्र।
7: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी। 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए। शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
8: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, बदलाव बड़ी बातें नहीं, छोटी सी शराफत मांगता है। अडॉप्ट

0: चरण पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: जॉनी जॉनी।
6: यस पापा।
5: बाइक चलाना है?
6: यस पापा।
5: हेलमेट पहनना है?
6: ओके पापा।
5: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
6: नो पापा।
5: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
4: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो हम बोल नहीं पाते वो कहीं ना कहीं लिख दिया जाता है, और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक शायरी होती है। एक वक्त ऐसा था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियों में उतार रहे थे, फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया साहब जैसे पोइट्स ने फीलिंग्स को बिना किसी फिल्टर के सामने ला दिया, और आज वही अल्फाज स्टेज पर जीते हैं, महसूस होते हैं, मंच पर आवाज बन जाते हैं। हे हाय, मैं हूँ आरजे गीत और शो है आज दिल शायराना, और मेरे साथ शो में बहुत सारे कवि और कवित्री मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। पंकज राणा जी, सुनील शर्मा जी, रेणु मिश्रा जी और कमल धमेजा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ आज, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो इन क्वेश्चन के जरिए हम चाहते हैं कि लिटरेचर जो कहीं पीछे छूट गया है वो हम फिर से उसको ला पाएं, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो समझ पाएं कि पोइट्री को किस इमोशन में लिखना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये सबसे है, हम बारी बारी आएंगे सबके पास, और सवाल ये है आप क्यों लिखते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि अगर पोइट्री ना होती तो आपके जो इमोशन है, आपकी बातें जो है वो आप कहाँ रखते। तो मैम आपसे ही शुरू करना चाहूंगी मैं ये सवाल। रेणु मिश्रा
2: जी, हम एक्चुअल में लिखते हैं अपने मन के भावों को लिखते हैं, और उन भावों को हम, मेरे भाव कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कोई भाव ऐसे होते हैं जो हम सबसे मिलते जुलते होते हैं, तो उन भाव को हम व्यक्त करके अपनी लेखनी से चलाते हैं, और उन भाव के तार हम दूसरों के भाव से जुड़ते हैं और हम संदेश दे जाते हैं एक, और शायद उनके दिल से भी वो भाव मिलते होंगे
0: जी।
2: तो हम इसलिए लिखते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचे और एक समाज को वो सही दिशा दिखा सके। हम
0: जितनी
2: हम अपनी लेखनी में चला लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम प्रेम जो है उसे भी हम प्रीत को भी ढाल लेते हैं, और कभी हम देश के लिए भी कुछ शब्द, जब हम देखते हैं कि देश में अभी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है तो उस समय हमारे खुद के अपनी आवाज आने लगती है कि हमें भी इस देश के सैनिक बनते तो शायद हम ऐसा कर पाते, और हम उस जगह पे खड़े होते तो कुछ करते, तो हम लोगों तक ये संदेश दे पाते हैं सिर्फ अपनी लेखनी से, अपनी भावों को व्यक्त करते। तो मैं सोचती हूँ कि एक कवि जो है, एक साहित्यकार जो है, वो एक समाज का दर्पण होता है, और वो अपनी चीजों को लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है
0: जी।
2: और वही मैं भी शायद कर लेती हूँ लेखनी के माध्यम से
0: जी जी जी।
3: मैंने कोरोना का दौर था जब लिखना स्टार्ट किया
0: जी,
3: और बहुत सारे गीत लिखे कि कोरोना पे जो त्रासदी थी उसके बारे में भी लिखा, और जो लोग कह नहीं पाते कुछ बातें जो हम कह नहीं पाते, तो वो शब्दों में कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से शब्दों को पिरोते हैं, और जब आप सब लोगों के सामने पेश करते हैं
0: जी,
3: मन की भावनाओं को पेश करते हैं।
4: लिखने का तो मेरे को, मैं बचपन में मैं लिखती थी, जब कोई मुझे कुछ बोल देता या मेरा मन उदास होता या कोई ऐसी कोई बात होती तो मैं कुछ लिख देती अपने मन की, जो भी बातें मेरे मन में आती, चाहे मैं आंसू ही बहा रही हूँ, रो रही हूँ, या कोई किसी ने, दोस्त ने कुछ बोल दिया तो मैं लिख देती थी। एक बार तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि वो शायरी थी, लेकिन मैं जानती भी नहीं थी तब कि ये मैंने शायरी लिखी है ये
0: जी।
4: लेकिन मुझे डायरी लिखने का भी बड़ा शौक था, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लिखती रहती थी, यही था मेरा। और मैं कभी ये जान, कभी मैंने ये नहीं, पहले गीत भी गाती थी मैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कवित्री बनूंगी या कभी ऐसा कुछ होगा। तो वही है, जब वो कोरोना का दौर आया और हाथ में मोबाइल आया तब सब लिख रहे थे, तो मुझे इतना आता भी नहीं था कि कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना तो आता था लेकिन कैसे किस तरीके से, क्योंकि हमारे जो ये लाइन है उसमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जो गिनती में लिखे जाते हैं।
0: हाँ जी,
4: कुछ चीजें तो खुद ही लिखी जाती हैं जो स्वतंत्र लिखते हैं, और कुछ होते हैं कि जैसे गजल होगी
0: मीटर में
4: होती है, कुछ तो मीटर में ही होते हैं, वो हमें करना पड़ती है। तो धीरे धीरे हमने फिर लिखना सीखा और अपने मन की बातें सब लोगों में लाना, और अपने आप को भी बड़ी तसल्ली होती थी कि मैंने कुछ लिखा, या कोई अप्रिशिएट करता था कि आपने कुछ लिखा, तो धीरे धीरे करके बस जुड़ते चले गए। बस यही नहीं है कि हमें किसी को दिखाना, बस ये होता है कि लिखने से मन का जो बोझ है, जो दर्द है,
0: वो हल्का हो जाता,
4: वो हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: सभी श्रोताओं को हरियाणा गौरव सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपने मन की बात कहने के लिए
0: जी,
1: क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का। जिस वक्त मैं कक्षा 5, 4-5 का विद्यार्थी हूँगा, तब से ही मैं कुछ ना कुछ शायरी वगैरह, कक्षा 6 में चला गया, फिर कुछ गीत लिखा, फिर जैसे जैसे व्यस्त होता गया और क्लासेस में आगे बढ़ता गया तो मेरा लिखने के भाव मतलब बढ़ते गए ठीक है ना। तो फिर जब मैं फिर कॉलेज पूरा करने के बाद बाहर निकला तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे मेरी आत्माएं थम गई हो। काम के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में वो लेखन, क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं था ये लेखन क्या है,
0: जी जी
1: लिखना क्या है, क्या शब्द कहाँ जोड़ना है, कहाँ मात्रा देनी है, कहाँ क्या देना है, तो इन चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जब उसके बाद मैंने 2003-04 के करीब फिर मैं एक मंच पे गया, ऐसे ही गया तो ऐसे ही सुनने के लिए, लेकिन मेरे मन में भी उथल पुथल हुई, जो अंदर दबे पड़े भाव थे वो निकलने शुरू हुए।
0: हाँ जी।
1: और मंच पे जाकर के मैंने कुछ अपने पुराने शब्द, शायरियां थी वो मैंने वहां पे दी, तो वहां से फिर मेरे को एक ललक, जिसको कहते हैं ना ललक, फिर लिखने की ललक लगी
0: जी।
1: फिर मुझे कुछ मेरे मित्र मिले, उन्होंने बोला कि अनवरत लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जैसे कि आजकल जो लोग हैं, जो यंग हमारे पोइट्स हैं, बहुत ज्यादा श्रृंगार के बारे में लिख रहे हैं. मैं इस बात को बिल्कुल ऐसे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि श्रृंगार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा था जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो राइटर थे वो समाज को आईना दिखा रहे थे, समाज के लिए लिखते थे. तो आज आपको कितना लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो जो लिख रहे हैं उसमें उनकी सोसाइटी या उनका देश भी दिखता है?
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रखी है. क्योंकि श्रृंगार वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आजकल जो लोगों का जो चलन हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे पास आ चुकी है, तो वो समाज का तो दर्पण नहीं दिखा रहे, समाज को सोचते हैं. वो तो समाज को बल्कि एक बोझ समझते हैं.
0: जी,
1: मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमसे दूर रहे. और वो आज की मीडिया जो हमारे साथ जो है, हमारा जो इंटरनेट जो कनेक्शन है, इससे वो क्या है, आकर्षित होते हैं और प्रेम के गीत सुन रहे हैं. देखो पहले जो था, पहले के कवि जो लिखते थे वो समाज से संदेश पर कविताएं लिखते थे जो लोगों तक पहुंचती थी और लोगों को सुधारने का एक रास्ता भी दिखाती थी. और अभी जो मिलते हैं, हम यह मूवी देख ले, ये हमारे सभी बच्चों के मतलब एक देखा जाए साहित्य का क्षेत्र ही है. चाहे हम समाचार पत्र पढ़े, चाहे मूवी देखे, चाहे हम कोई पत्रिका पढ़े या नॉवेल पढ़े, तो जो हमारे पास परोसा जा रहा है वही बच्चे ग्रहण कर रहे हैं. एक्चुअल में
0: पंकज राणा जी आपके पास आते हैं, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. जब आप मंच पर होते हैं, मंच से पहले क्या कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस है जो आप डेली करते हैं ताकि आपके मंच पे जाके फंबल ना हो?
2: देखिए कि पोइट्री, जब कभी हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से रखा गया.
0: हाँ जी.
2: जैसे कोई जयंती है तो हम तैयारी करके जाते हैं, उसमें पता रहता है कि भाई ये हमें रचना वहाँ पढ़नी है. मैं अपनी बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, बस मंच पे गया और सुना दिया.

0: कमल धमेजा जी आपके पास आती हूँ, आपका ही सवाल है ये। पंकज राणा जी ने जो अभी सवाल कहा कि कोई ना तो कोई कॉपी बनाई है, गुरु जी जो थे वो, जो हर एक आर्ट का कोई ना कोई गुरु होता है, हमारा मेंटर होता है। जैसे अगर हम म्यूजिक की बात करें या हम डांस की बात करें, लेकिन अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई गुरु हुआ है ना, कि सिखाया गया है फिर आगे वो गए हैं बच्चे, वो पोइट बने हैं। तभी शायद ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई भी मीटर नहीं है, कुछ नहीं है और बस लिखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पोइट्री में भी मेंटोर होने चाहिए, गुरु होने चाहिए?
1: बिल्कुल, गुरु के बिना तो कैसे ना, ज्ञान ही नहीं है
0: जी।
1: तो गुरु है तभी है, क्योंकि वही वाली बात है कि भाव तो हम लिख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे कहीं भी, पर वही है कि गुरु होना जरूरी है। और मेरे गुरु भी है, जरूर है, वो है लखनऊ से है
0: जी,
1: डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं वो।
0: सुनील जी आपके पास आते हैं सर, एक सवाल है। पहले लिटरेचर बहुत स्लो था, लोग वक्त देते थे, मंचों पर भी बहुत वक्त देते थे, समझते थे, लेकिन अब सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, बिकॉज ट्रेंड भी है। आपको क्या लगता है कि जो अभी स्पीड जो चल रही है, इससे लिटरेचर ग्रो हुआ है या पीछे छूट गया है?
2: क्या है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी ये चाहता है कि जो 2 घंटे का सफर है वो मैं 10 मिनट में तय।
0: हाँ जी बिल्कुल।
2: इससे क्या है, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां, वो सब समाप्त होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता सब समाप्त होता जा रहा है, और आगे बढ़ने की होड़ में हम अपने लेक्चर को बिल्कुल पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा होना चाहिए, समाज के अंदर अपने आप से, खुद से जो हमारी लेखनी है, एक अच्छा संदेश है
0: जी,
2: समाज उसके ऊपर अमल करे, नई पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा संदेश जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये देश यूं ही चलता रहे मस्ती के साथ, और हमारी संस्कृति ऐसे जिंदा रहे।
0: आपसे एक और सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, अकेले कमरे में बैठी हुई कोई अच्छी सी लाइन या मंच की तालियां, क्या ज्यादा पसंद है? और बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहती हूँ आपसे।
2: मुझे मंच की तालियां पसंद है।
0: ये ऑनेस्ट आंसर है आपका।
2: मंच की तालियां पसंद।
0: कोई ऐसी रचना जिसपे आपको मंच पर बहुत ज्यादा तालियां मिली हो और मिलती रही हो, वो रचना हम जरूर सुनेंगे।
2: जी, जी जी। पहले 4 पंक्तियां
0: जी
2: निवेदित करता हूँ,
0: बिल्कुल, बिल्कुल
2: सभी श्रोताओं के बीच में
0: जी,
2: के भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, चढ़ते हुए सूरज का ऐसा स्वभाव हूँ, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, बस इस भरे मैं खाने की असली शराब हूँ।
0: क्या बात है।
2: और 4 पंक्तियाँ देखिए, के मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, महकती शाम लिख दूंगा, छलकते जाम लिख दूंगा, तोड़ कर लाज के बंधन चली आओ इन बाहों में, तुम्हारे दिल की धड़कन पर मैं अपना नाम लिख दूंगा।

0: सब को सब नहीं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: मीजा जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, मंच की तालियां या फिर अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: देखो, अगर अकेले कमरे में बैठी ही अच्छी लाइन लिखी जाती है तो तालियां किसे पसंद नहीं।
0: जी, तो कोई रचना जो आप यहाँ पर आज रखना चाहें, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहें?
1: जी जरूर। पहले मैं चार पंक्तियाँ आपके सामने अपने फौजी भाइयों के लिए

0: बहुत बढ़िया पंकज जी, आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको, मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: अच्छी लाइन लिख जाए और मंच पे तालियां, मुझे, मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि तालियां बजाए, मेरी लाइन इतनी सबको इतनी अच्छी लगे कि तालियां अपने आप बज उठे।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: मुझे ये पसंद है
0: जी।
1: और मैं आपको सौंपता हूँ चार लाइनें अपने आराध्य के लिए प्रभु श्री राम से शुरुआत करता हूँ।
0: जी जी जी।

केवट पार उतारा, प्रभु ने केवट पार उतारा। लोगों ने कहा कि श्रृंगार, अभी उनकी बात पे आता हूँ कि लोग पर श्रृंगार फूड ना हो, कि श्रृंगार कैसा लिखा जाए, कि प्रेम क्या है। भात नरसी कलाए थे वो प्रेम है, साग विदुर घर खाया

सबरी के। और प्रेम पे मैंने लिखा कि मैं प्रेम पे लिखता हूँ तो भगवान के प्रति, और ये प्रेम लिखता हूँ कि शुद्ध प्रेम लिखने की कोशिश होती है। प्रेम पतित पावन।

0: क्या बात,
1: अपनी एक रचना जो मेरा अध्याय।
2: मैम आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
0: मुझे तो अकेले में लिखना ही पसंद,
2: मुझे यही एक्सपेक्ट था आपसे।
0: लिखना पसंद है और जब हम लिखेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों तक तो आवाज जाएगी, जब लिखेंगे नहीं तो सुनाएंगे।
2: एग्जैक्टली जी,
0: तो मैं यही बोलती हूँ। तो मैं चार पंक्तियाँ देश के नाम समर्पित करती
2: हूँ जी जी जी,
0: और माँ शारदे को नमन करती हूँ। झुका कर आसमां हमको सितारे तोड़ लाना है, मैं यही संदेश देती हूँ लोगों को कि डरना नहीं है हमें, झुका कर

0: वैसे मेरे सवाल और भी हैं, पर समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और जाते जाते सबसे एक सवाल ये है कि आपके लिए कविता क्या है। बस इसी सवाल से हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैम आपसे सवाल है, कविता क्या है आपके लिए?
1: मेरे लिए कविता एक मेरे मन के भाव है, उद्गार है, जो मेरे मन में जैसे भाव आते हैं मेरे संबल बना मेरे लिए, कविता मेरे लिए शक्ति बनी। जब मेरे पति संसार से चले गए तो मेरे को लगा कि मेरी लेखनी मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और मैं इसे अपने संबल मानती हूँ, अपनी शक्ति मानती हूँ।
0: जी सर, आपके लिए?
2: कविता मेरे लिए एक आत्मा है
0: जी,
2: कि हम अपने मन के भाव जब प्रकट करते हैं सबको, हम लोग कह नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने पिता को खोया तो मैंने उनके ऊपर जब चार लाइनें लिखी तो बहुत, मैं आपको चार लाइनें चलते चलते सुना भी देता हूँ कि मैंने लिखा जब

0: मन के भाव हम जो नहीं सबके सामने प्रकट कर पाते हैं
1: जी,
0: लोगों को लगता है कि वो कविता है पर वो मन के भाव होते हैं
1: जी। मेरे लिए कविता मेरे मेरा दुख दर्द मेरी हर खुशी कविता है
2: जी।
1: और जब मैंने चार पंक्तियां स्टार्ट करी थी लिखना उस वक्त, और वही बात है कि उस दिन ही मैं फेसबुक से जुड़ी थी और लोग लिख रहे थे, आया था टाइटल पिता, तो उसी दिन मेरे पापा का एक साल हुआ था, मेरे पापा इस दुनिया से गए थे, तो बस तभी मेरे को तभी से मैंने लिखना शुरू किया
2: जी।
1: कविता बस मेरे साथ मेरे मेरा दुख दर्द और मेरे जिस्म से हर एक चीज से जुड़ी हुई है, जिसमें कि जो मैं कह नहीं सकती, जो आंसू मैं आंखों में रो के रखती हूँ वो अपने कागज पर मैं उतार देती हूँ
2: जी। सर आपके लिए कविता क्या है?
3: कविता मन के भाव है। कविता जो भी हमारे मन में भाव आए वो हमने एक कागज पे उतारे वही कविता बन जाती। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये विश्व युद्ध के मुहाने खड़ा है और हम देख रहे हैं निर्दोषों की जान जा रही है,
0: बिल्कुल
3: वहीं से मानवता बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, ठीक है, तो वहीं से भाव उतर करके आए हैं। ये कैसा हाहाकार है, ये कैसा

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

93.6 छटके सपना हूँ मैं आपके साथ और लाया हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार आप और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे मैं आज किसी एक स्टार की नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी की बात करने जा रही हूँ क्योंकि आज की ये शाम डेडिकेटेड है उन सभी माओं को उन्हें पर्दे पर देखकर हम सब बड़े हुए हैं जिनकी ममता इतनी रियल लगती थी कि कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक किरदार है। ऐसा लगता था जैसे सच में वो एक्टर या एक्ट्रेस की रियल माँ हो क्योंकि वो दौर ही कुछ और था जहाँ माँ सिर्फ एक साइड किरदार नहीं होती थी बल्कि कहानी की धड़कन हुआ करती थी। उनके आंसुओं पर ऑडियंस रोती थी और उनकी एक मुस्कुराहट पर दिल को सुकून मिलता था। फिर चाहे वो सुहाग फिल्म की निरूपा रॉय जी हों या फिर बेटा फिल्म की अरुणा ईरानी जी हर तरफ से हर किरदार में बहुत अलग रही इनकी कहानी और आज मैं इन्हीं कहानियों से आप सभी को मिलवाऊंगी। पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का आप एंजॉय कीजिए इन गानों को। वापस आकर उन सभी माओ की बात करेंगे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सुकून देने वाला बनाया। वैसे आज के एपिसोड में आप ही मेरे साथ हो सकते हैं शामिल। अगर आपके पास भी किसी ऐसी माँ की कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो नंबर है मेरा 9654896896। तुरंत अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए कि आज आप मेरे साथ कौन सी कहानी कौन सा किस्सा शेयर करने वाले हैं। पर इससे पहले कुछ गीत

भाई ये शमा तो परवाना ढूंढती है, पर हम ढूंढते हैं उस माँ को जिसने अपनी पूरी जिंदगी हम पर न्योछावर कर दी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6। कुछ हटके सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज रात बाकी बात बाकी में हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही याद कर रहे हैं स्क्रीन की उन सभी मॉम्स को जिन्होंने हमें कभी हंसाया तो कभी रुलाया तो कभी हमें माँ और बच्चे का सबक सिखाया। ऐसी ही एक माँ को आज हम याद करने जा रहे हैं जो है सभी के दिल की देवी, श्रीदेवी। हिंदी सिनेमा में उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि हर दौर की माँ के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना जलवा बिखेरना शुरू किया। सदमा फिल्म की इमोशनल एक्टिंग हो या मिस्टर इंडिया की बबली और एंटरटेनिंग जर्नलिस्ट सीमा, नगीना की नागिन हो या फिर चांदनी की रोमांटिक सिंप्लिसिटी, चालबाज का डबल रोल हो या फिर लम्हे जैसी फिल्मों में लेयर्ड परफॉर्मेंसेस, हर किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, इमोशन, डांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा में ऐसा दौर बनाया जहां पूरी फिल्म सिर्फ उनके नाम से चलती थी। पर श्रीदेवी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो समय के हिसाब से अपने आप को बदलती थी। एक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश से हिंदी सिनेमा में वापसी की, तो ये सिर्फ एक कमबैक फिल्म ही नहीं थी बल्कि एक इंडियन मॉम की उस पहचान की कहानी थी जिसे अक्सर फैमिली के बीच कहीं खो दिया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने शशि नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था जो कि हर घर में मिलती है। बच्चों को बड़ा करने में, उन्हें प्यार देने में ये माँ अपने आप को कहीं भूल जाती है और एक मुकाम पर अपने आप को बहुत ही अकेला पाती है। इस किरदार को न केवल श्रीदेवी जी ने निभाया बल्कि एक बार फिर से बच्चों को भी याद दिलाया कि उन्हें बड़ा करने वाली माँ कहीं पीछे छूट गई है। और इस फिल्म के बाद उन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था मॉम। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के लिए हर दर्द को सहती है और उसे जस्टिस दिलाने के लिए हर बाउंड्री पार कर जाती है। इस फिल्म में श्रीदेवी की इंटेंस परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों ने बहुत ज्यादा सराहा और साथ ही इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से भी सम्मानित किया गया। वैसे ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही अजीब है। कई बार तो बचपन में ही आपको इतना प्यार मिल जाता है कि आपका प्रोफेशनल करियर फ्लरिश करने लगता है, लेकिन कई बार ये आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सालों तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक और अदाकारा है

थी जिन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनका स्वागत बढ़ चढ़कर किया और कुछ कल्ट फिल्मों में उन्हें काम भी दिया, पर उनकी पर्सनल लाइफ में इतने उतार चढ़ाव थे जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें थोड़ा सा साइड कर दिया, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे ही अदाकारा पहुंची अपनी लेट 40s में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और उसके बाद तो इनके पास काम की कमी ही नहीं रही। ये कोई और नहीं बल्कि नीना गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अपने 50s में आते आते फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर बधाई हो जैसी फिल्में, हर जगह उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। नीना गुप्ता की सिंप्लिसिटी, इमोशंस और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने हर किसी को मजबूर कर दिया कि वो अपनी फिल्मों में इन्हें एज अ मदर कास्ट करें। अब चाहे आप पंचायत सीरीज ही देख लीजिए तो उसमें इतनी ग्राउंडेड एक्टिंग नीना जी ने की है कि पंचायत 2 में भी उन्हें लेना तो लाजमी था। फिलहाल ऐसी हर माँ को जो कि बहुत स्ट्रांगली अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ खड़ी रही, उन्हें हम करते हैं सैल्यूट और चलते हैं और बढ़ते हैं म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: बनी, तुम समझते क्यों नहीं?
1: क्या समझो नैना?
0: तुम समझते क्यों नहीं कि कभी कभी पानी को बचाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, वरना पानी का पंगा हो जाएगा।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो मानानी 89.6।

भाई जब भी फिल्म इंडस्ट्री में माँ की बात आती है तो एक चेहरा ऐसा है जो हमेशा हमारी आंखों के आगे आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि फरीदा जलाल जी हैं, जिनका जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ और 60s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इनकी डेब्यू फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी तकदीर। उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आराधना, पारस और बॉबी जैसी फिल्मों से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। अब चाहे वो हमारे काका जी राजेश खन्ना जी हों या फिर बिग बी अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर जी हों या फिर काजोल और ऐसा के, इन्होंने हर दौर के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वैसे अगर बात फरीदा जी की हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर कुछ कुछ होता है मैं, वो जो इमोशनल मदर का उन्होंने रोल प्ले किया था, इन फिल्मों की बात ना करें तो उनके बारे में हमने मानो कोई बात की ही नहीं।

और अगर यहाँ ऋतिक रोशन साहब की कभी खुशी कभी गम की बात करें तो उसमें वो जो इमोशनल केयर टेकर का किरदार उन्होंने निभाया था वो अल्टीमेट था। और फरीदा जी की एक और बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि जब वो माँ का किरदार निभाती हैं तो वो सिर्फ अपने डायलॉग से ही आपको इमोशनल नहीं करती बल्कि अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आंखों से भी आपको माँ वाली फीलिंग दे ही देती हैं। खैर अगर बात हो रही हो मदर्स डे की तो इसमें मदर इंडिया को इंक्लूड ना करें, भाई इतनी बड़ी गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकती। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने माँ ना होते हुए भी जवान बच्चों की माँ बनकर पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया वो कोई और नहीं बल्कि हम सब की प्यारी नरगिस जी थी। वैसे माँ करने वाली बात तो ये है कि इस वक्त तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई लेकिन मदर इंडिया जैसी फिल्म में काम करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवा ही लिया। खैर इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार की वाइफ और सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का किरदार निभाया था। और क्या आप जानते हैं कि ये हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसे ऑस्कर्स में भी नॉमिनेशन मिला था। और इन सब की जबरदस्त माइंड ब्लोइंग एक्टिंग स्किल्स ने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया था। खैर माँ चाहे नरगिस हो या फरीदा जलाल या फिर आपकी या मेरी माँ, माँ तो माँ होती है। हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारी माँओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो ना केवल घर देखती हैं बल्कि हमारे अंदर वो संस्कार भी डालती हैं जिससे कि हम अच्छे इंसान बनकर सबके सामने आते हैं और नाम शोहरत कमाते हैं। फिलहाल वक्त है कुछ गीतों का, आप इंजॉय कीजिए ट्रैक्स को, वापस आकर स्क्रीन मॉम्स की फिर से बात करेंगे।

डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास

होना है, बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है।

वैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज देखी गई कि जो भी अदाकारा है उसे पसंद आई, उन्होंने दामन उन अदाकाराओं का कभी छोड़ा ही नहीं। अब चाहे वो राखी गुलजार हो या फिर रेखा जी, ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने अपनी 20s का चार्म बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक फिल्मों में बिखेरा था, वहीं अपने लेट 40s में आते आते उन्होंने माओ के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इस फिल्म इंडस्ट्री को दी। अब यहाँ बात करेंगे राखी गुलजार जी की, जिन्होंने करण अर्जुन, राम लखन और खलनायक जैसी फिल्मों में इमोशनल और स्ट्रॉन्ग मदर का किरदार निभाया। वहीं दूसरी ओर जया बच्चन जी ने कभी खुशी कभी गम और मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन की मां बनकर हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और अगर ऐसी ही खूबसूरत अदाकाराओं की बात हो रही है तो हम अपनी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बागबान फिल्म में एक इमोशनल मदर का कुछ ऐसा किरदार निभाया कि लोग उनके कायल हो गए। और सिर्फ बागबान की ही मैं यहाँ बात क्यों करूँ, जमाई राजा जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित की माँ और अनिल कपूर की मदर इन लॉ का रोल प्ले किया था, और साथ ही और वीर जारा फिल्म में भी बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी माँ के किरदार में।

0: समझते क्यों नहीं?
1: क्या समझो नैना?
0: तुम समझते क्यों नहीं कि कभी कभी पानी को बचाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, वरना पानी का पंगा हो जाएगा।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

वैसे मैं अब उस माँ की बात करने जा रही हूँ जो कि अपनी 70s में भी बिल्कुल 30s की लगती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वो अदाकारा हैं जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों थे, यानी कि हमारी अपनी रेखा जी, जिन्होंने 1999 में मदर फिल्म में एक सिंगल मदर का किरदार निभाया था और उसके बाद कोई मिल गया, क्रेश, दिल है तुम्हारा और सुपर नानी, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। वैसे ये आज तक है, चलिए ये तो कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए क्योंकि इन सब ने अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन किया है, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखा है। खैर, माँ चाहे बॉलीवुड की हो या हमारी अपनी, हमेशा ही सम्मान के हैं, बड़ा करती हैं, बल्कि अपने हमेशा ही हमसे रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो बच्चे जो अपनी माँ को जवाब देते हैं या फिर उन्हें कुछ गलत शब्द कहते हैं। तो इस मदर्स डे पर रेडियो महारानी की ओर से आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो माँ जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इतना बड़ा किया, संस्कारी बनाया, उस माँ के लिए कुछ भी गलत कहना सही नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का मदर्स डे बहुत अच्छा जाएगा, आप सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपनी अपनी मदर्स के साथ और अपने अपने बच्चों के साथ। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ का प्यार पाते रहिए। फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आप सभी से इजाजत लेने का। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ अस, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ठठा बाय बाय सायोनारा। फिलहाल छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, जो कि मैंने अभी अभी सुना और मुझे इतना खूबसूरत लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये गाना जरूर सुनना चाहिए। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल एंड लवली मदर्स। हैप्पी मदर्स डे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: तियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कोई मैनू कहती
1: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
3: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।

0: मजा। वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
4: है तो तेरी मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
3: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।

0: करता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
0: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की

0: कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: क्या आप जानते हैं हमारी किशोरदा को क्यूदा पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार।
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पीजे सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वहीं पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर अब, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है। रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग